सुप्रभात, ये आकाशवाणी रांची का विविध भारती केंद्र है, FM 103.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन है सोमवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा यहीं आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी रांची का विविध भारती केंद्र है, FM 103.3 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदनवार में पहले सुनिए आज का चिंतन। मधुर सुसंस्कृत और अच्छी तरह से बोली गई वाणी जीवन में हर पक्ष में कल्याणमय होती है। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए झरोखा में आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। अभी कुछ ही देर बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ। आज सुनिए भाग 234। 6:45 पर संगीत सरिता में विविध भारती के खजाने से गायिका विदुषी डॉक्टर प्रभा अत्रे से बातचीत सुनवाई जाएगी। संगीत सरिता का ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज शाम 6:45 पर। 7:00 गुनगुनाइए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर कार्यक्रम होगा हम है राही प्यार के। 8:00 समाचार और 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे दिन में 2:00। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक। आज के फनकार 9:30 पर आज सुबह ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर। इस कार्यक्रम को आप आज रात 9:30 पर पुनः सुन सकते हैं। दस बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। 11:00 रंग तरंग कार्यक्रम होगा। 12:00 समाचार और 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी। दिन में 1:00 से सुनिए सुरीला सफर। 2:15 पर दोपहर समाचार सुनवाए जाएंगे और 2:30 पर सदाबहार नगमों का आनंद लीजिए। सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त होगा 3:00 से। 4:00 पिटारा में सेहतनामा के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग। 5:30 पर कार्यक्रम होगा तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 7:00 जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म उलझन के गाने सुनवाए जाएंगे। हवा महल में रात 8:00 सुनिए झलकी ब्लैक एंड व्हाइट। लेखक हैं महावीर सिंघल और निर्देशक हैं आनंद किशोर माथुर। 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक और 9:00 से आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। 8:45 पर समाचार संध्या सुनिएगा। 10:00 सुनिए छाया गीत और 10:30 से कार्यक्रम होगा ढलती जाए रात।

हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, आज 4 बजे पिटारा में सेहतनामा के अंतर्गत डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। ये था आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का झरोखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती। कुछ ही देर में कार्यक्रम श्री रामचरितमानस पाठ।

श्री राम ने भरत को कर्तव्य तथा धर्म पालन के लिए कई प्रकार से उपदेश देकर आश्वस्त किया। कहा, गुरु की कृपा सूर्य कुल की रक्षा करने में उनकी सहायक होगी। गुरु का अनुग्रह वन में स्वयं उनका भी रक्षक होगा। साधक को आज्ञा पालन रूपी साधना से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। श्री राम की स्नेह सिक्त वाणी सुनकर भरत को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनका दुख, दोष बोध, विषाद सभी मिट गए। वचन मात्र से उन्हें श्री राम के साथ वन प्रवास तथा जगत में जन्म लेने का लाभ प्राप्त हो गया। 14 वर्षों की लंबी अवधि बिताने के लिए कोई अवलंब तो चाहिए ही, और फिर श्री राम के राजतिलक के लिए सभी तीर्थों का जल ले आए थे, उसका क्या करना है? इस संबंध में भी स्वामी की आज्ञा अपेक्षित है। मन में ये भी अभिलाषा है कि चित्रकूट के सभी पवित्र स्थल, वन, पशु पक्षी, नदी, सरोवर, निर्झर और पर्वत समूह सबका दर्शन कर लें, विशेष रूप से उन स्थलों का जो श्री राम चरणों से अंकित हैं। मंगलमूल भरत तथा श्री राम का संवाद सुनकर देवगण धरती पर कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे।

0: 입사리다.
1: मित्रों नमस्कार, आइए आज सुनते हैं सुविख्यात गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे से राम सिंह पंवार की ये बातचीत। संगीत सरिता में ये बातचीत वर्ष 1989 में पहली बार प्रसारित की गई।
2: संगीत सरिता के श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं देश की सुप्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर प्रभा अत्रे, एक सृजनशील गायिका, आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण में परंपरा और शास्त्र को परखने वाली एकेडेमिशियन और शिक्षिका। संगीत के विविध क्षेत्रों में प्रभा जी ने महत्वपूर्ण काम किए हैं। संगीत के साथ साथ आपने उच्च शिक्षण भी पाया है। आप साइंस और लॉ के ग्रेजुएट हैं तथा संगीत में आपने डॉक्टरेट भी की।

0: प्रभा जी नमस्कार।
1: आपको और हमारे श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार।
0: प्रभा जी, पढ़ाई लिखाई और संगीत दोनों एक नदी के दो किनारों के समान हैं। एक तरफ पढ़ाई और दूसरी तरफ संगीताभ्यास। जैसा कि आप बीएससी लॉ ग्रेजुएट हैं, आपने संगीत को ही अपने जीवन का माध्यम क्यों चुना? क्या आपके घर में संगीत का माहौल पहले से था?
1: जी नहीं, मेरे परिवार में संगीत किसी ने सुना तक नहीं था। मेरे माताजी और पिताजी दोनों ही शिक्षण के क्षेत्र में थे और उन्होंने उस क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है। ये संजोग की बात है कि माँ की बीमारी के कारण संगीत ने मेरे जीवन में प्रवेश किया
0: जी।
1: लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कलाकार बनना कुदरत ने पहले से ही तय किया था और यही कारण है कि मैंने अपने आप को संगीत के प्रति अर्पित किया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं इसकी लायक बनी रहूँ।
0: प्रभा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपकी गायन शैली एक स्वतंत्र है, तो इससे क्या मतलब है, अथवा एक परंपरा का जो निर्वाह करते हैं, इस विषय में कुछ कहेंगे?
1: जी, संगीत में परंपरा और शास्त्र का बहुत महत्व है, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन परंपरा का मतलब अंधश्रद्धा नहीं है, अनुकरण नहीं है। परंपरा स्वयं काल के अनुसार नित्य नवीन रूप लेती है
0: जी।
1: अगर वो कहीं रुक गई तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। आज का निसर्ग बदला हुआ है, आज की जीवन पद्धति बदली है, तो फिर कला को भी कुछ बदलना जरूरी है। परंपरा के नाम से हम कितनी ही अनवांटेड और गलत बातें अपनाते हैं और उन्हें छोड़ते भी नहीं। हर कला को उस काल के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। संगीत के बारे में जो भी विचार मैंने आज तक सामने रखे हैं, उनके पीछे एक लॉजिक है, एक रीजनिंग है। ये दृष्टिकोण मुझे साइंस और लॉ ने दिया है।
0: बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया। प्रभा जी, कलाकार तो सदैव स्वतंत्र रहना पसंद करता है, यानी उसका संपूर्ण जीवन अथवा समय कला साधना को समर्पित होता है। लेकिन आप अपनी कला साधना के साथ साथ, जैसे कुछ समय आकाशवाणी में प्रोड्यूसर रही और आजकल SNDT विद्यापीठ में प्रोफेसर और संगीत विभाग के प्रमुख हैं, और इसके अलावा भी स्वरश्री रिकॉर्डिंग कंपनी में एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं
1: जी।
0: तो ये सब कुछ करते हुए संगीत की साधना में कुछ बाधा नहीं आती?
1: जी नहीं।
0: कैसे निभा पाते हैं?
1: ये सब इस दृष्टि से कि संगीत से जुड़े हर माध्यम का अनुभव संगीत के विकास में सहायक है। कलाकार को जितना अधिक अनुभव होगा, उतनी ही उसकी कला परिपूर्ण होगी। सच पूछिए तो संगीत की साधना के लिए 24 घंटे भी पूरे नहीं, लेकिन ये साधना विविधांगी होना जरूरी है। प्रत्यक्ष गाना बजाना तो प्रमुख है ही, लेकिन साथ में अच्छा संगीत सुनना, संगीत ग्रंथ पढ़ना, संगीत के बारे में बोलना, संगीत के ऊपर लिखना, चिंतन करना और पढ़ाना, ये सब बातें क्रिएटिविटी को ताजा रखने के लिए आवश्यक है। जब तक हमारे विचार स्पष्ट नहीं है
0: जी,
1: तब तक हम कुछ नया सोच ही नहीं सकते।
0: अच्छा प्रभा जी, अब आपकी गायन शैली के बारे में कुछ बात करें कि सरगम आपकी गायन शैली का एक सुंदर अंग है।
1: हाँ।
0: और आपके डॉक्टरेट के प्रबंध का विषय भी सरगम रहा है
1: जी।
0: तो सरगम के बारे में आप हमारे श्रोताओं से कुछ कहेंगे?
1: जरूर। सरगम का अर्थ है स्वरों के नाम, जैसे सारे गम सा, इनको लेके स्वराकृति को पेश करना। भारतीय शास्त्रीय कंठ संगीत को साकार करने में आलाप, तान और बोल यानी शब्दों का प्रयोग होता है। हर एक की अपनी अपनी विशेषता है और कार्य अलग अलग है। आलापों का सौंदर्य तानों में नहीं और बोलों का कार्य आलाप नहीं कर पाते। इसी प्रकार सरगम का अपना अपना सौंदर्य है और अलग कार्य भी है जो आलाप, तान या बोल नहीं कर पाते। और इसीलिए ख्याल से लेकर डिस्को तक सभी संगीत प्रकारों ने आज सरगम को अपनाया है।
0: प्रभा जी, आप तो शास्त्रीय संगीत की कलाकार हैं
1: जी,
0: क्या फिल्म संगीत और गजलें वगैरह भी सुनना या गुनगुनाना पसंद करती हैं?
1: अवश्य। संगीत का कोई भी प्रकार अपने आप में सुंदर ही होता है
0: जी।
1: उसको खराब करता है कलाकार।
0: अच्छा।
1: फिल्म संगीत में देखिए, लता जी और आशा जी जैसे कलाकार है, उनके संगीत को खराब कहना या चीप कहना ये कहने वाले की नासमझ ही होगी।
0: बिल्कुल ठीक।
1: मैं खुद ख्याल, ठुमरी, दादरा तो गाती ही हूँ, लेकिन भजन भजन और कभी कभी गजलें भी गाती हूँ। हर संगीत प्रकार की अलग अलग ट्रेनिंग है, साधना है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रीय संगीत सीख लिया तो सब कुछ आ गया।
0: प्रभा जी, शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा आम लोग फिल्म संगीत या गजलों को क्यों अधिक पसंद करते हैं?
1: पहली बात तो ये है कि फिल्म संगीत शब्द प्रधान संगीत है और फिर उसके साथ विजुअल यानी दृश्य भी है। शब्द और दृश्य दोनों अपना अपना योग संगीत को देते हैं और इसीलिए वो समझने में आसान हो जाता है। शास्त्रीय संगीत में शब्दों का होना ना होने के बराबर है, क्योंकि उसमें शब्द एक साधन है, साध्य नहीं और उसमें कोई दृश्य भी नहीं है, खाली सुर और लय की आकृति होती है। जो लोग सुर लय की भाषा नहीं समझते उनको शास्त्रीय संगीत कठिन लगना स्वाभाविक ही है, लेकिन संगीत में एक ऐसा गुण है जो मन की गहराइयों को छू लेता है और इसीलिए संगीत के प्रति अगर प्रेम हो, लगन हो, तो सामान्य श्रोता भी शास्त्रीय संगीत से आनंद प्राप्त कर सकता है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, अब एक प्रश्न और हम आपसे पूछेंगे कि वर्ल्ड म्यूजिक का अभ्यास करने के लिए, आप भारतीय संगीत सीखने के लिए आपको इंडो अमेरिकन और फुल ब्राइट फेलोशिप प्राप्त हुई थी
1: जी,
0: तो ये वर्ल्ड म्यूजिक अभ्यास की आपको क्यों आवश्यकता पड़ी?
1: विज्ञान ने सारे विश्व के मानव को नजदीक लाया है। आज जागतिक सभ्यता, जागतिक संस्कृति की बातें हम करते हैं, इसलिए एक दूसरे को जानना जरूरी हो गया है और उसके लिए थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता भी हमें महसूस होती है। मैं एक संगीतकार हूँ, इसीलिए पूरे जगत के संगीत को जानना चाहती हूँ, उसका अभ्यास करना चाहती हूँ। प्रत्येक संस्कृति का अपना अपना संगीत है और उसके प्रभाव से अब हम वंचित नहीं हो सकते। जागतिक संगीत के संदर्भ में हमारा संगीत क्या है इसकी पहचान जरूरी है। हमारे संगीत के प्रिजर्वेशन के लिए, प्रोपगेशन के लिए और प्रोग्रेस के लिए अन्य देशों के संगीत का अभ्यास आज जरूरी हो गया है। एक बात और है, एक कलाकार होने के नाते मेरे जीवन में श्रोता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। श्रोता चाहे भारतीय हो या भारत के बाहर का, कलाकार और श्रोता में अगर दूरी रही तो महफिल उखड़ जाती है। अपना समय और पैसा देके श्रोता महफिल में आता है, उसका आदर करना, उसे संतोष देना, ये मेरा धर्म है, कर्तव्य है, ऐसा मैं मानती हूँ।
0: तो प्रभा जी, थोड़े से समय में हमने काफी बातचीत कर ली। हम संगीत श्रोता कार्यक्रम विविध भारती और श्रोताओं की ओर से आपका आभार प्रदर्शित करते हुए आपसे आगे चाहते हैं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विदुषी डॉक्टर प्रभा अत्री से राम सिंह पंवार की ये बातचीत। उस समय इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। अब सुनते हैं विदुषी डॉक्टर प्रभा अत्री का गाया राग अहीर भैरव।

डॉक्टर प्रभा अत्रे से राम सिंह पंवार की ये बातचीत अभी आपने सुनी और उन्हीं का गाया राग अहीर भैरव भी। आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राजुल का नमस्कार। आइए सुनते हैं बैजू बावरा फिल्म का गाना। उस्ताद आमिर खान के बोल हैं, माफ कीजिएगा, उस्ताद आमिर खान की आवाज में शकील बदायूनी के बोल हैं, नौशाद का संगीत।

0: शकील बदायूनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत अभी आपने सुना फिल्म बैजू बावरा से, स्वर उस्ताद अमीर खान साहब का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: भूले बिस्तर गीत कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं गीता दत्त का गाया हुआ फिल्म आर पार का ये गाना। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले के स्वर में तुलसीदास फिल्म का ये गाना। गीत रचना जीएस नेपाली की है और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

शकील बदायूनी का ये रचा गीत सुन रहे थे आप फिल्म आन से, जिसे संगीत से सवारा था नौशाद ने। आवाजें शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की थीं।

शंजना की बुबला बू इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। पीएल संतोषी की शब्द रचना को संगीत में पिरोया था सी रामचंद्र ने।

सुधा मल्होत्रा के स्वर में अभी आपने सुना दिले नादान फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने और शुरू में पिरोया था गुलाम मोहम्मद ने। इस गीत के साथ ही अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये गाना भी आपने सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। और अब सुनते हैं तराना फिल्म का ये गाना, शैलेंद्र सिंह और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं। तिलक राज थापर का लिखा गीत है और राम लक्ष्मण का संगीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हमारा ही प्यार के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं वारदात फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और उषा मंगेशकर की आवाजों में। रमेश पंत का लिखा गीत है, बप्पी लहरी का संगीत।

0: सावन को आने दो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे यसुदास और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। माया गोविंद की गीत रचना थी और राजकमल का संगीत था।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: हमें रही प्यार के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनाते हैं कुर्बानी फिल्म का गाना कंचन, मनहर और आनंद की आवाजों में।

ये है फिल्म शादी से पहले का गाना। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी के स्वरों में आप सुन रहे थे ये गीत, जिसे लिखा था गौहर कानपुरी ने, धुन बनाई थी सपन जगमोहन ने, फिल्म का नाम था शादी से पहले। इस गीत के साथ ही अब आज का हमें रही प्यार के कार्यक्रम समाप्त होता है। आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमरीका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान सम्पन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी

0: बंधु पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
4: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
5: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
6: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
7: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317177 और 0112314444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, छह आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू, कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमरीका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एडमिशन के दिन आते हैं तो माता पिता का बच्चों पर दबाव बढ़ जाता है। अक्सर माता पिता ये चाहते हैं कि जो विषय वो तय करें बच्चे वही विषय चुनें और आगे की पढ़ाई करें। एक छात्र के जीवन में सबसे मुश्किल समय तब होता है जब उसे अपने आगे के रास्ते का चुनाव करना पड़ता है, जब उसे अपने लिए खास विषयों का चुनाव करके पढ़ाई की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है। और तब अगर माँ बाप के दबाव में फैसला किया तो बच्चों की प्रतिभा इस दबाव और अनचाहे विषय के तले घुटती चली जाती है। हम अपने बच्चों को अपनी मर्जी से अपने करियर के चुनाव के अवसर आखिर कब देंगे?

हर बच्चे में एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, किसी न किसी विषय में उसकी दिलचस्पी होती है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा कलाकार हो, बहुत अच्छा अभिनय करता हो, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता हो, कोई बहुत अच्छा लिखता हो, कोई तकनीक में बहुत अच्छा हो। जाहिर है कि हर बच्चे के भीतर छिपे प्रतिभा के इन बीजों को सही तरीके से पोषित करना अनिवार्य होता है, लेकिन हमारे यहाँ जीवन में ज्यादा पैसे कमाने और ज्यादा प्रभाव और रसूख कमाने पर जोर दिया जाता है। एक जमाना था जब डॉक्टर इंजीनियर के सिवा तीसरा करियर नजर ही नहीं आता था। आज भी माँ बाप या परिवार के बुजुर्गों का बच्चों पर दबाव रहता है कि वो कोई ऐसा करियर चुने जिसमें ज्यादा पैसे कमाने के अवसर हों और जिंदगी ज्यादा सुख सुविधाओं में बीते। ये नहीं देखा जाता है कि बच्चे का मन और उसके सपनों की उड़ान क्या है। अगर बच्चों को आजादी दी जाए अपना करियर खुद चुनने की, तो हो सकता है कि वो आगे चलकर बहुत ज्यादा तरक्की करें।

बहुत ज्यादा दबावों में प्रतिभा का विकास नहीं होता है, बहुत ज्यादा उम्मीदों का बोझ होता है, तब भी कहीं न कहीं बच्चों की प्रतिभा और उनके मन पर असर पड़ता है। ये ठीक है कि माँ बाप बच्चों की भलाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक सुविधाजनक जिंदगी बच्चे जिएं, जिसमें किसी तरह का कोई अभाव ना हो, कोई परेशानियां ना हो, लेकिन बच्चों को ये आजादी तो होनी ही चाहिए कि वो अपने मन से तय करें कि वो अपनी जिंदगी की राहों को किस दिशा में ले जाना पसंद करते हैं। बस माँ बाप को चाहिए कि वो इस दिशा को निर्धारित करने में बच्चों का थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर दें और उन्हें एक सही नजरिया प्रदान करें, बच्चों को सही हालात दें आगे बढ़ने के, और फिर देखिए कि वो किस तरह से अपने सपनों की उड़ान भरते हैं।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ जी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
2: अच्छा
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

चहकते सुबह के साथ एनर्जेटिक मंडे का गुड मॉर्निंग, रूटीन और ट्रैफिक के शोर के बीच सुकून की लहर, सुरीले संगीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं राजुल, और शुरुआत कर रहे हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म के इस गाने से। डोमिनिक सर्जो, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सर्जो की आवाजें हैं। जावेद अख्तर का लिखा गीत है, शंकर एहसान लॉय का।

0: बावरे मन की मल्हार में भीगता ये गीत जॉली LLB 2 फिल्म से आपने सुना। जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजें थी, जुनैद वसी के बोल थे और चिरंतन भट्ट का संगीत था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आइए अब सुनते हैं आयुष्मान खुराना और नीति मोहन का गाया हुआ नौटंकी साला फिल्म का गाना।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस अंतराल के पहले आपने सुना था फिल्म लुटेरा का गाना, मोनाली ठाकुर की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और अमित त्रिवेदी का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं राजशेखर का लिखा और कृष्णा का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत, जिसे गाया है मोहित चौहान ने। फिल्म का नाम है तनु वेट्स मनु।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह का गाया हुआ सिटी लाइट्स फिल्म का गाना। रश्मि सिंह के बोलों को संगीत से सवारा है जीत गांगुली ने।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब सुनते हैं अनुपम रॉय और श्रेया घोषाल का गाया हुआ पीकू फिल्म का ये गाना।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं केदारनाथ फिल्म का गाना देवनेगी की आवाज में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये गाना।

सनम पुरी और शिप्रा गोयल की आवाजों में हंसी तो फंसी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। कुमार के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं अजहर फिल्म का गाना अरमान मलिक की आवाज में। रश्मि विराग का लिखा गीत है और अमाल मलिक का संगीत।

डियर जिंदगी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, अरिजीत सिंह का गाया हुआ। कौसर मुनीर के बोल थे और अमित त्रिवेदी का संगीत था। और लीजिए अब सुनिए लैला मजनू फिल्म का गाना। अरिजीत सिंह और जॉनिता गांधी की आवाजें हैं। इरशाद कामिल का लिखा गीत, जिसे संगीत से सवारा है नीलाद्री कुमार ने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मुझे ऐसी आवाज,
3: संगीतकार खयाम,
2: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है, कब्बन मिर्जा साहब। बुलाया, उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर करे। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
3: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल, हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

0: कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाजें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज मेरी लड़की जैसी थी, तो लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस आवाज तुम्हारी एकदम लड़की की तरह है। लेकिन एक बात यह थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूजिक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूजिक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जिससे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेमनगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेमनगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफी फिल्में, मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

स्कूल के गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती है गाने की तो वो अपनी आवाज़ में गाता है, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंदा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब

स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का, किशोर दा का, वादा तेरा वादा।

फूलों से, तो ये शुरुआत तो मैंने की और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया वंस मोर। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था।

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहाँ भी।
1: इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता है लवारिस बच्चा लोग को? ये पालता है ये। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अमर अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने लाके डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी सुदेश भोसले इन्होंने गाया है, आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती है। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुम्मा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊंगा, मेरे सारे गाने सुदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज भी।

FM 103.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी रांची का विविध भारती केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे FM मुख्य समाचार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेटा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 1042 नव चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इनमें पहली से पांचवी कक्षा के लिए 274 तथा छठी से आठवीं कक्षा के लिए 768 सहायक आचार्य शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब कारोबार और उससे जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र रोहित उरांव को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी ने रोहित उरांव को आज तथा रामेश्वर उरांव को कल यानी 30 जून को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। रांची के पहाड़ी मंदिर से बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए 82 श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालु 3 जुलाई को अमरनाथ गुफा के लिए प्रस्थान करेंगे और 6 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़, धनबाद समेत 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। अधिकतर क्षेत्रों में तेज बारिश, वज्रपात और 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। और भारतीय जूनियर हॉकी टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनमें से 3 रांची के बरियातो स्थित सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस की छात्राएं हैं और चौथी खिलाड़ी सिमडेगा की है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एफएम मुख्य समाचार। यह आकाशवाणी रांची का विविध भारती केंद्र है। झरोखा श्रोताओं, आइए झरोखा के अंतर्गत आपको शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के एक संक्षिप्त विवरण दे दें। अब से कुछ ही देर में यानी कि 10:05 से आप सुनेंगे गजल टाइम। 10:30 का समय होगा फिल्मी गीत संगीत का कार्यक्रम गीत बहार का। दिन के 11:00 और 11:58 पर आप सुनेंगे एफएम मुख्य समाचार। आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके गीत, इसका समय होगा 11:02 पर।

12:05 पर आप सुनेंगे यादों की महफिल, 1 बजे से आप सुनेंगे सुरीला सफर, दिन की 2 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम त्रिवेणी, 2:15 का समय होगा दोपहर समाचार का, और 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

सखी सहेली। इस कार्यक्रम का समय होगा 3 बजे, 4 बजे आप सुनेंगे पिटारा, 5 बजे का समय होगा कार्यक्रम छाया गीत का, नॉन स्टॉप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने नए पुराने, इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 5:30 पर। शाम के 6 बजे से आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 6:05 पर पुनः आप सुनेंगे तराने नए पुराने। मन भावन, इस कार्यक्रम का समय होगा शाम के 6:30 से ही, और 7 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला, 7:45 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद का, लघु नाटकों का कार्यक्रम हवा महल, इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे रात्रि के 8 बजे से, 8:15 पर आप सुनेंगे चित्र लोक। आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार, रात्रि के 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत, और 10:30 का समय होगा रंग तरंग का कार्यक्रम ढलती जाए रात। ये थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी, जिसे आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत। हम आकाशवाणी रांची के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं FM के 103.3 MHz पर। गजल टाइम, यह कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही समय में।

गजल टाइम कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस गजल टाइम प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जगजीत सिंह की आवाज में कुछ गजलें। तो आइए सुनते हैं उनकी आवाज में यह पहला गजल।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म अर्थ से जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल। अगली गजल भी हमने ली है अर्थ से, जगजीत सिंह की आवाज है, कैफी आजमी ने इसे शब्दों में पिरोया है, संगीत दिया है जगजीत सिंह ने।

प्रेम गीत इस फिल्म से लिया है हमने, जगजीत सिंह की आवाज़ में लिए हमने अगली गज़ल। संगीत दिया है जगजीत सिंह ने और शब्दों में पिरोया है इंदिवर ने।

अभी आप सुन रहे थे गजल टाइम और यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी रांची के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.3 MHz पर। अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

एफएम 103.3 मेगाहर्ट्ज पर ये हम आकाशवाणी रांची के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम गीत बहार का और इस कार्यक्रम को लेकर आज मैं हाजिर हूँ, आज आपके साथ आपकी दोस्त कंचन। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। समीर की रचना है, संगीत नदीम श्रवण का है, फिल्म का नाम है दिल का रिश्ता।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म ट्यूबलाइट से। आतिफ असलम की आवाज़ में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत है और संगीत प्रीतम का है।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत बहार अपने दोस्त कंचन के साथ। दोस्तों कहीं जाइएगा मत, हम लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म गजनी से, जावेद अली और सोनू निगम की आवाज में। प्रसून जोशी का लिखा गीत है और संगीत ए आर रहमान का है।

और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म एजेंट विनोद से। अरिजीत सिंह की आवाज़ में अमिताभ भट्टाचार्य की रचना है, संगीत प्रीतम चक्रवर्ती का है।

0: इसी गीत के साथ गीत बहार का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अपनी दोस्त कंचन को दीजिए विदा, नमस्कार। हम आकाशवाणी रांची के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं FM मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 1042 नव चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इनमें पहली से पांचवी कक्षा के लिए 274 तथा छठी से आठवीं कक्षा के लिए 768 सहायक आचार्य शामिल हैं। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत कल से होगी। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र देंगे और उनका सत्यापन करेंगे। यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ED ने शराब कारोबार और उससे जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को कल और उनके पुत्र रोहित उरांव को आज पूछताछ के लिए समन जारी किया है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़, धनबाद समेत 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। अधिकतर क्षेत्रों में तेज बारिश, वज्रपात और 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। स्कूली खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI ने वर्ष 2025-26 के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया है। परिषद को राष्ट्रीय चयन ट्रायल तथा कोचिंग कैंप के सफल आयोजन के लिए सराहना पुरस्कार तथा 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के उत्कृष्ट आयोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ आयोजक श्रेणी में द्वितीय स्थान हासिल हुआ। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 11:58 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 103.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी रांची का विविध भारती केंद्र है। अब से हम थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद। जी हाँ, हम लेकर आएंगे आपकी पसंद और सुनाएंगे आपके फरमाइश के गीत।

गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: Cena.
1: FM 103.3 MHz पर ये आकाशवाणी रांची का विविध भारती केंद्र है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा आपको कि अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आपकी पसंद के गीत, आपकी फरमाइश के गीत। तो जी हाँ, आज इस गीत में, इस कार्यक्रम में आपके साथ शामिल है आपकी दोस्त कंचन। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए, कार्यक्रम में देर न करते हुए हम कार्यक्रम में जल्दी जल्दी आपकी फरमाइश लेते हैं और सुनवाते हैं आपकी पसंद के गीत। जी हाँ, तो कार्यक्रम का पहला खत हम लेते हैं राजनांदगांव से। याकूबा आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर, बड़ा बाम्बो सुपाई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश ताती, ललित प्रधान, देवेंद्र जी, चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती अनु बनमाली, पूजा और सिद्ध कुमारी बेसरा। आप सबों ने फरमाइश की है फिल्म जुर्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में। इंदिवर की रचना है और संगीत राजेश रोशन का है।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म लव से, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है और संगीत आनंद मिलिंद का है, और इस गाने को फरमाइज करने वाले हमारे श्रोता हैं आदर्श नगर मलोट, मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेक बीरक, मीका बीरक। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म रिफ्यूजी से, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में। जावेद अख्तर का लिखा गीत है और संगीत अनु मलिक का है, और इस गाने को फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम आदिबा और

अनीस अंसारी, सारिमपुर बक्सरसी, आसमा खातून अंसारी, राज एसडी अंसारी, महताब अंसारी, आफताब अंसारी और मीराज अंसारी। और इसी गाने को फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत फिल्म रिफ्यूजी से।

कार्यक्रम का अगला खत लेते हैं सरगुजा मैन पाड से। सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बिलदार, अकरम आसमा बिलदार, उल्लाह आसमा बिलदार, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत फिल्म इतवार से, भूपिंदर सिंह और आशा भोसले की आवाज़ में। हसन कमाल का लिखा गीत है और संगीत बप्पी लहरी का है।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दो बदन से मोहम्मद रफी की आवाज में शकील बदायूनी की रचना है, संगीत रवि शंकर शर्मा का है और इस गाने को फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं रहमानिया मोहल्ला मैसौल सीतामढ़ी बिहार से, तलत जहानाज फरहत जहानाज रिफअत जहानाज नुजहत जहानाज वसीम अकरम नदीम अकरम समीम अकरम अमन अकरम और इस गाने को फरमाइश करने वाले और हमारे श्रोता हैं मनीगाछी जतुका से मोहम्मद वकील राही विजय कुमार विजय फिरोज आलम नाज प्रवीण आलम सीख सवाना आलम चांदनी नाज। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत फिल्म दो बदन से।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म सलाम नमस्ते से, सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में। जयदीप साहनी का लिखा गीत है और संगीत विशाल और शेखर का है, और इस गाने को फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दो बिहार नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म तलाश से विशाल ददलानी की आवाज में। जावेद अख्तर का लिखा गीत है और संगीत राम संपत का है। और इस गाने को फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: इसी गाने के साथ फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अपनी दोस्त कंचन को दीजिए विदा, नमस्कार। FM 103.3 MHz पर ये आकाशवाणी रांची का विविध भारती केंद्र है। 11:58 होने को है, आइए सुनते हैं FM मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर बाद रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 1042 नव चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इनमें पहली से पांचवी कक्षा के लिए 274 तथा छठी से आठवीं कक्षा के लिए 768 सहायक आचार्य शामिल हैं। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत कल से होगी। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र देंगे और उनका सत्यापन करेंगे। यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा। बोकारो जिले में अवैध पेट्रोल, डीजल और इथेनॉल के कारोबार पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तीन अलग अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। सेक्टर 12 और बालीडीह थाना क्षेत्र में चले अभियान के दौरान भारी मात्रा में पेट्रोल, डीजल और इथेनॉल का अवैध भंडारण पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान तेल टैंकर, दर्जनों ड्रम और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं। रांची के धुरवा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा महापर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां आज देव स्नान यात्रा के साथ धार्मिक अनुष्ठान शुरू होंगे और इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 15 दिन के अनासर यानी एकांतवास में चले जाएंगे। 16 जुलाई को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची, रामगढ़, धनबाद समेत 20 जिलों में आज से 4 जुलाई तक बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 1:10 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS वीक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी

0: 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आरोप फिल्म से गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, माया गोविंद के बोल, भूपेन हजारिका का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं इंदिवर के बोल सपन जगमोहन के संगीत के साथ अभी तो जी लें। इस फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में अभी तो जी ले फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज education, nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor? ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि शाम 7:45 पर रोजाना होते हैं नए नए कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत। आज आप सुन सकते हैं एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज की फिल्म है उलझन और कार्यक्रम यादों की महफिल में वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आनंद फिल्म का गीत आपने सुना, गुलजार के बोल सलील चौधरी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई बाहों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर की आवाज में अभिमान फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: आंखियों के झरोखे से, इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। आंखियों के झरोखों से इस फिल्म से गीत आपने सुना। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल और उन्हीं का संगीत।
1: अरे सुनो, आजकल ये हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे अब्दुल्ला फिल्म से ये गीत। आनंद बख्शी की शब्द रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत, एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से, और इसे संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?

0: मत वाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्स्टापोजिशन by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: दौलत वाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट।

0: और जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldie?
2: No. Anthony Gonsalves.
0: Oh, yes! Anthony Gonsalves.
3: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आपकी कसम फिल्म से।

0: जाते।
1: आपकी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संकेत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म आन मिलो सजना, सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस कार्यक्रम में हम करते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट की जाती है जिसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे संबंधित गीत इस कार्यक्रम में सुनाए जाते हैं और आपको इस टेक्स्ट को पढ़कर अंदाजा लगाना होता है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वो टेक्स्ट तो आपने हमारे फेसबुक पेज पर पढ़ ही लिया है, लेकिन जो इससे नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए हम एक बार कार्यक्रम की शुरुआत में टेक्स्ट और या कहें इस इबारत को बता देते हैं। तो आज की इबारत है, ए दिल सुनो मेरी एक बात मानो तुम, तय जो किया तुमने वो सच करने की ठानो तुम, कभी गर राह हो मुश्किल तो खुद को आजमाना तुम, देखा कि ये दिन रात जो वो सपने सजाना तुम, किसी को देखकर धड़को तो फिर मुस्कुराना तुम, तुम्हारा भी तो दिल होगा उसे अपना बनाना तुम, कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम। तो ये है आज की इबारत जिस पर संबंधित जो भी गीत हैं इनसे इनके अंदर जो भी शब्द हैं उन शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जाएंगे। हमारे साथियों ने तो बहुत सी बातें लिखकर भेजनी शुरू कर दी हैं और हमारे जो भी साथी जो अब तक हमारे फेसबुक पेज तक नहीं पहुंचे हैं उनके लिए बता दें कि www.facebook.com/vbsmumbai इस पते पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज तक पहुंच सकते हैं, या अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप फेसबुक अकाउंट के जरिए वहां अगर आप सर्च करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा तो देवनागरी यानी हिंदी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ये पेज, और इसमें एक ब्लू टिक भी मिलेगा आपको साथ में। यहां आपको सुरीला सफर की पोस्ट मिलेगी और भी विविध भारती के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी पोस्ट भी आपको यहां नजर आएंगी, और इस सुरीला सफर की पोस्ट पर कमेंट के जरिए आप शामिल हो सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में रोजाना। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथियों ने जो बहुत सी बातें लिख भेजी है वो क्या है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिल कुछ और करना चाहता है, ऐसा लगता है कि हम क्यों ना अपने मन की कुछ काम करें, अपने दिल का कुछ काम करें, कहीं घूमने चले जाएं या बहुत सारी जो मुश्किलें हैं उनसे छुटकारा पा ले किसी तरह से, लेकिन हमारा दिमाग हमें जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और बहुत सा ऐसा काम करने के लिए कहता है जिसे करने का हमारा दिल नहीं करता। तो आप अपने दिल की सुनते हैं या दिमाग की, और किस तरह से समझाते हैं अपने दिल को, ये सारी बातें आप हम तक भेज सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि क्या कभी दिल की बात मानकर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसे करने के लिए आपके दिमाग ने साफ साफ मना किया हो। तो ये बातें हम तक पहुंचाइए कमेंट के जरिए। तब तक हम कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है और किसने इसे लिखा।

0: तुझे पसंद।
1: दुलारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और हमारे सवाल का जवाब भी हमें मिल गया। फिल्म का नाम और गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी ने कहा कि मैंने भी एक समय अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दिमाग की बात मान ली। उस वक्त लगा कि यही सही है, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस होता है कि कुछ सपने, कुछ खुशियां, कुछ अधूरी ख्वाहिशें वहीं पीछे छूट गईं। दिमाग ने मुझे सुरक्षित रास्ता तो दिखाया, लेकिन दिल जिस राह पर चलना चाहता था उसका अफसोस आज भी कहीं ना कहीं बाकी है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि सच्चे दिल की आवाज बिल्कुल सुनाई देती है अच्छी तरह से। इस इबारत की दिल छू लेने वाली लाइन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम। ये इस पूरी नज्म की सबसे प्यारी लाइन है। जब इंसान खुद से रूठ कर खुद से ही मान जाता है तो उससे बड़ा कोई सुकून नहीं होता। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि किसी ने मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। ये गाना उन्होंने बताया और आगे लिखा कि किसी की जिंदगी में एक शख्स के आने से पूरी दुनिया बदल जाती है। गीत सच्चे प्यार की उस मासूमियत और शक्ति को दर्शाता है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई आज गुजरात में वट सावित्री का व्रत मनाया जा रहा है और 15 दिन के बाद ये मनाया जाता है, बाकी राज्यों की अपेक्षा ये कह रहे हैं। और हम बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी ये त्यौहार आज मनाया जा रहा है। सभी को शुभकामनाएं। हमारे और साथी बता रहे हैं कि इबारत की आखिरी लाइनें जैसे कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम ने ये साफ कर दिया कि आज दिल धड़कने के साथ मान मनोवल भी होगा। कभी ये दिन अपनी जिंदगी में आए बहुत बार रूठ जाने पर मनाना पड़ा, इसका आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ा, लेकिन रूठा कोई अपना था। पैसा खर्च करने में कोई संकोच नहीं होता है। तो भाई क्या है ये पूरा किस्सा, हम जरूर जानना चाहेंगे। अगर आप लिखकर भेजना चाहें तो कमेंट में जरूर भेजें। हमारे एक साथी ने एक नज्म ही लिखी, दिल सुनो एक वादा कर लो, जो बोया है उसे फूलों सा सच कर लो, राहों में कांटे आए तो संभल कर चलो, हिम्मत से अपनी हर अंधेरे को रोशन कर लो, किसी की आंखों में जब तुम्हारा अक्स दिखे एक मीठी मुस्कान से उसे अपना कर लो, तुम्हारा भी तो है एक छोटा सा दिल, प्यार की खुशबू से उसे एक घर कर लो, झुंझला कर अगर कभी दूर हो जाओ मायूस ना करो फिर से मान जाओ। वहीं हमारे एक और साथी ने इबारत के अनुरूप कुछ गाने सुझाए हैं, देखते हैं उनकी

और हमारी लिस्ट कितनी मिलती है, क्योंकि बहुत से हमारे साथियों ने लिस्ट के में जो इबारत है उसमें से कुछ शब्द चुने हैं और कहा है कि कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं। हालांकि हमें कुछ गीत तो नजर आ गए हैं जो हमारी लिस्ट के साथ मैच कर रहे हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आज का ये कार्यक्रम तो दिल से होकर गुजरेगा, तो कुछ दिल की बातें हो जाए। दिल से बहुत उम्मीदें होती हैं इंसान को, कभी किसी को अपना बनाएगा, कभी किसी का हो जाएगा, कभी किसी की कमजोरी बनेगा, कभी किसी की चाहत बनेगा। एक बेचारा दिल ही है, कभी टूटता है कभी संभलता है, और इस दिल के आगे मजबूर है इंसान। आज भी कितने नादान है, दिल समझता ही नहीं, बाद बरसों के उन्हें देखा है तो दुआएं मांग बैठा है। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुनना चाहिए, धड़कता हुआ दिल हो या रूठा हुआ या फिर हो टूटा हुआ, दिल तो आखिर दिल ही है। वाकई बहुत ही खूबसूरत बातें आप लिख भेज रहे हैं, तो हमें ये भी बताइए कि क्या आप जो ठानते हैं वो काम करके ही रहते हैं और किस तरह से करते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आपको सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है और आपका दिल कौन सा काम करने के लिए नहीं करता। ये सब बातें आप बताइए, तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसने लिखा है ये गीत।

तो बिल्कुल सही नाम आपने बताया फिल्म का भी, और इसे गीत को लिखा था गुलजार ने, ये भी आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी बात कर रहे हैं और अपनी दिल की बातें बता रहे हैं। बहुत से साथियों ने तो कह दिया है कि भाई दिल के नहीं सुनते, दिमाग के सुनते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुने मेरे दिल, एक बात सुनो तुम, सफर जो चुना तुमने उसे पूरा करके दिखाना तुम, कभी जो आए अंधेरे तो हौसला बढ़ाना तुम, बुने हैं जो हसरतों के ताने बाने उन्हें हकीकत बनाना तुम, किसी की चाहत में धड़को तो वफा निभाना तुम, कोई अपना सा लगे दुनिया में उसे गले लगाना तुम, कभी में सिमट जाना तुम। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ए दिल तेरी हर बात को दिल से अपनाऊंगा मैं, जो ठान लिया है उसे मंजिल तक ले जाऊंगा मैं, राहें चाहे मुश्किल हो हिम्मत ना हारूंगा मैं, सपनों की उस दुनिया को सच कर दिखाऊंगा मैं, मोहब्बत अगर सच्ची मिली मुस्कुरा कर निभाऊंगा मैं, दिल जिसे अपना कहे उसे दिल में बसाऊंगा मैं, और अगर कभी रूठ भी गया तो तेरी पुकार सुनने पर तेरी एक पुकार पर मुस्कुराते हुए लौट आऊंगा मैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी कविताएं निकल रही हैं आपकी कलम से और हम तक पहुंच रही हैं। और हमारे एक साथी कह रहे कि ओह एक बार फिर उबाओ इबारत। तो देखिए इन्होंने ये कहा और कहा कि पढ़कर गीतों का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते, मतलब आज अपनी भागीदारी शून्य है। तो हम ये समझ चुके हैं कि इन्होंने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से जवाब दिया है, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों ने तो उस शब्द भी निकाल लिए हैं इबारत से और ढेर सारे गीतों के नाम भी दे दिए हैं, जितने तो आज के इस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हो सकते। तो हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विविध भारती से उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को एक थीम पर लगाए गाना रहने चाहिए, क्योंकि एक थीम रहे या एक शब्द दे दिया जाए ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन हर प्रोग्राम की अपनी एक तरीका होता है, अपना एक माहौल होता है कह सकते हैं हम। तो इस कार्यक्रम को कुछ इसी तरह से चलाया जाता है जिसमें बहुत सारे शब्दों वाला एक एक इबारत आप तक पहुंचा दी जाती है और आपको उनमें से शब्द चुनने होते हैं जिनमें गीत आते हैं। तो कभी कभी कुछ अलग अलग चीजें भी होती रहनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रेमी दिलों को प्रोत्साहित करती ऊर्जा स्रोत रूपी इबारत में प्रेम रस उड़ेलती सलाह भी है और सांत्वना भी। प्रेम प्रसंगों में रूठने मनाने के सुंदर संक्षिप्त चित्रण व सुलभ समाधान वाकई आशिक और माशुकाओं को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। प्रेम गाथा के प्रवाह के संगीत में सुरीला सफर के हमराही बनने का हम के लिए हम श्रोतागण बेकरार हैं, ऐसा इनका कहना है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर छोटी सी आज की इबारत कह रही है कि दिल की आवाज सुनकर अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखना, चुनौतियों का डटकर सामना करना और प्रेम व रिश्तों को स्नेह विश्वास तथा मुस्कान के साथ संजोकर जीवन को खूबसूरत बनाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज गद्यांश काव्यात्मक रूप में है जो सीधे दिल को छू रहा है, दिल की बातें दिल ही जाने, या दिल धड़कने का सबब याद आया जो दिल को छूकर निकला, दिल की महफिल सजी तो रूह की रौनक भर गई, वो आए मेहमान इस दिल के तो दिल की रंगत और बढ़ गई। तो इस तरह से इन्होंने भी काव्यात्मक रूप में दिया है अपना जवाब। लेकिन आप हमें ये बताइए, क्या कभी जैसा कि इस गीत में हो रहा था कि दिल की वजह से कभी कभी पिटने की नौबत भी आ सकती है, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो वो किस्सा हमसे साझा कीजिए अगर आप करना चाहें तो। और तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इसमें संगीत किसका है, फिल्म का नाम भी बताइए।

काला बाजार फिल्म का ये गीत आपने सुना, आशा भोसले की आवाज, सचिन देव बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के बोल। संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल से दुनिया बनाई जाती है। मनुष्य वही बड़ा है भाई जिसका दिल उसकी आंखों में दिखाई दे। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा दिल सुनो मेरी पुकार, मेरे इन सपनों को अब करो तुम साकार, मन में है ठाना जो अपने लिए आज उस संकल्प को पूरा कर, सजाऊं जीवन का साज, दिल तुम सपनों की डगर हो और उम्मीदों का संसार, जहां रोज बनेंगे नए इतिहास, मेरी आंखों में जो पलते हैं कुछ अनकहे अरमान, उन्हीं सपनों को देना है अब मुझे अब एक नया मुकाम। वहीं हमारे और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत दिल को मजबूत बनने, सपने पूरे करने, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारने और जीवन में प्यार और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। हमारे और साथी ने इबारत के लिए एक कविता लिख भेजी कि दिल के धड़कनों में सपने बसाए हैं, मानो तुम ही मेरी हर दुआ में समाये हैं, राह चाहे कठिन हो साथ अपना बना रहे, प्यार के सिलसिले यूं ही सदा चलते रहें, किसी बात पर कभी रूठ न जाना, अगर रूठ भी जाओ तो जल्दी मानना, दिन रात तेरी यादों का उजाला रहे, हर पल मुस्कुराना ही हमारा हवाला रहे, सपनों की डोर कभी टूटने ना पाए, दिल से दिल का रिश्ता सदा महकता जाए, ये जीवन तभी सच में सुंदर कहलाए जब हर राह पर अपना साथ मुस्कुराए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अपनी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ किस्से भी तो भेजिए ताकि कुछ आनंद आए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई किसी आप वो कह रहे कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए, बेशक जवाब देर से मिलेंगे लेकिन बेहतरीन मिलेंगे। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज थीम तो अच्छी है लेकिन हमने कभी दिल की नहीं, अपने आप पर कभी भरोसा नहीं किया, बस भाग्य के भरोसे चल रहे हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, इस टोली के आदमी हैं हम। तो भाई इस टोली के लोग भी होने ही चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति एक ही तरह के होंगे तो कैसे होगा। हमारे एक और साथी ने लिखा कि दिल की सुनने से खुशी नहीं मिलती, दिमाग नहीं नहीं उन्होंने लिखा है कि दिल के सुनने से खुशी मिलती है, दिमाग के सुनने से नहीं मिलती। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल में सजी यादें तो बहुत सारी हैं, हम जिक्र नहीं करते मगर बातें तो बहुत सारी हैं। तो भाई चलिए इन सारी बातों को लेते हुए क्यों ना कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा दें, और ये गीत तो हम अनुपमा फिल्म से सुनवा रहे हैं, बताइए किसने लिखा है।

अनुपमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। तो गीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, सही जवाब हमें आपने दिया। और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर। हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिमाग सदैव दिल के ऊपर होता है, दिल तो बहुत कुछ चाहेगा मगर दिमाग इन द्वंद्वों से सही राह दिखाता है, अतः दिमाग की ही मैं सुनता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है आपने ये सोचा। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि रूठना मनाना तो जिंदगी का हिस्सा है, जहाँ अपना रिश्ता होता है वहाँ ये किस्सा है, वहीं ये किस्सा है। नाराजगी पल भर की हो सकती है लेकिन अपनापन उम्र भर का होना चाहिए, क्योंकि जो दिल से अपने होते हैं वो रूठ कर भी दूर नहीं जाते, बस मनाए जाने का इंतजार करते हैं। तो बहुत ही सही बात आपने कही कि वाकई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रूठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें मनाया जाए, और एक बार भी मनाने की कोशिश की जाए तो तुरंत मान जाते हैं। आप हमें बताइए कि क्या आप किसी से रूठे हैं और अब तक माने ना हो, उनके मनाए जाने का इंतजार कर रहे हो, और कौन सी ऐसी बात है जिस पर आप रूठ जाते हैं आसानी से, और किसी को मनाना हो तो क्या करते हैं आप, ये बातें हम तक भेजिए। तब तक हमारे और साथी कह रहे हैं कि मैं हमेशा दिल की बात सुनती हूँ। वही हमारी और साथी कह रही है कि कभी कभी दिल उस बात को मनवा लेता है और हम मान भी लेते हैं, बाद में दिल की उस नादानी पर बेहद अफसोस होता है उन्हें। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनका एक गीत शामिल हो गया लिस्ट में, जो गाना था वो शामिल हो गया, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे गीत शामिल होते रहें तो कितना ही अच्छा लगे। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारा जो दिल कहता है वही काम

0: करते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग कहता है और वो काम करने से नुकसान हो सकता है ऐसा कहते हैं, तो हम वो काम नहीं करते। यानी दिल और दिमाग के बीच में बड़ा ही अच्छा सामंजस्य आपने बिठा रखा है, तभी तो जो करना चाहते हैं वो करते हैं, कभी दिल के सुनते हैं कभी दिमाग के सुनते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में दिल की बातें होने वाली हैं, कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुननी चाहिए, पर कैसे, दिल कुछ कहता है दिमाग कुछ कहता है और इन सब की कश्मकश में कभी कभी हम उलझ के रह जाते हैं। चले दुन की दुनिया को बर्बाद करके भूले से मोहब्बत कर, इस तरह से उन्होंने गानों की लाइंस बताई हैं, अपने पसंदीदा गानों के बारे में बताया है। देखते हैं उनके गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी कभी इंसान दिल और दिमाग के बीच इस तरह से उलझ जाता है कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन इंसान को किसी को नुकसान पहुंचाकर कोई काम नहीं करना चाहिए, उस समय दिल की आवाज ही सुननी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही और हमारा दिल कह रहा है कि क्यों ना आपको एक संदेश सुना दें।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: तो अपने दिल की सुनिए और कल ही लगाइए फोन हेलो सहेली में। लेकिन फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, तो आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने बहुत से लोगों की लिस्ट में देखा है और हमारी लिस्ट में भी पहले से शामिल था, तो हमें ये बताइए कि कौन सी फिल्म का ये गीत है और इसमें आवाज किसकी है।

जरा हटके जरा बच के है बॉम्बे मेरी जान, मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के।

सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज़ ही हमारे सवाल का सही जवाब है और हमारे साथियों ने भी सही जवाब दिया। हमारे एक साथी, हमने पूछा ना दो दुनी चार फिल्म का गीत सुनवाते हुए कि भाई कभी किसी दिल के वजह से कभी पिटने की नौबत आई क्या, तो कुछ किस्सा साझा करें। तो हमारे साथी ने भी लिखा है कि बदमाश दिल ने किसी को पिटवाया है तो वो अपनी कहानी साझा करें, लेकिन हमारे साथियों का तो कुछ और ही कहना है। वो कह रहे हैं कि अगर दिल के सुनकर पिटने की नौबत आई या नहीं उसी को यहाँ उजागर करेंगे, तो कार्यक्रम के दौरान ही शायद पिटने की नौबत जरूर आ सकती है। तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने सभी साथियों को, इसलिए आप ये किस्सा हमसे साझा ना करें। हमारे और साथी कह रहे हैं कि जब दिल धड़कता है तो ऐसा लगता है कोई अपना हमारे पास आ रहा है, जब अपना हमारे सामने होता है तो दिल कुछ कह ही नहीं पाता। वहीं हमारे और साथी कह रहे हैं कि मेरे मिस्टर जल्दी नाराज हो जाते हैं और मेरी पोती भी जल्दी रूठ जाती है, तो दोनों को ही मुझे मनाना पड़ता है और वो जल्दी से मान भी जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जल्दी मान जाते हैं। वहीं हमारे और साथी कह रहे हैं कि उनका कहना है इस कार्यक्रम के बारे में कि आज आप हमारे पिटने की बातें क्यों कर रही हैं, ये तो सोचिए भला अपनी इज्जत का फालूदा कौन करवाएगा। भाई ठीक है, हम तो बिल्कुल माफी मांगते हैं कि ये बात आप ना साझा करें कि कभी पिटने की नौबत आई थी या नहीं। वहीं हमारे और साथी कह रहे हैं कि औलाद द्वारा मन के विरुद्ध किए गए काम थोड़ी मुश्किल पैदा करता है, माँ बाप सबसे तर्क कर सकते हैं, कार्यरत जवान बच्चों से नहीं। हमारे और साथी कह रहे हैं कि आज नेटवर्क साथ नहीं दे रहा इसलिए वो इस कार्यक्रम में ज्यादा साथ नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो भी कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं। और हमारे और साथी कह रहे हैं कि भैया आज हेलो फरमाइश में फोन लगा रहे हैं, इस वजह से उनका पूरा ध्यान वहां है, तो बस हमारी यही कामना है कि आपका कॉल लग जाए। हमारे और साथी कह रहे हैं कि दिल और दिमाग का हिसाब किताब बहुत अलग अलग होता है, जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, धैर्य की बहुत जरूरत होती है। वैसे भी पुरानी कहावत है कि समय से पहले और जरूरत से ज्यादा नहीं मिलता किसी को भी, किस्मत या भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है। होता तो है। हमारे और साथी कह रहे हैं कि दिल कब किसी पे आ जाए पता नहीं, कब किससे रूठ जाए पता नहीं, दिल के करीब किसी को आने मत देना, क्या होगा पता नहीं, दिल को रहने दो पंछी की तरह मस्त खुले आसमान में उड़ने के लिए, दिल को लगी चोट कभी भरती नहीं, संभल जाओ वरना पछताओगे। और हमारे और साथी कह रहे हैं कि उन्हें अपने पेड़ पौधों के साथ रहना और अपनी छोटी सी वाटिका में काम करना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उनका दिल खुश होता है इस काम से। और हमारा दिल खुश हो सकता है जब हम सुनवा दें कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अभी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका? गुड्डी की फीस का।
1: दिखा।
2: 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

अनाड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। यही हमारे सवाल का सही जवाब, हमने किसकी आवाज में गीत सुन रहे ये पूछा था आपसे। और ये हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो पागल है, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहता है पर दिमाग उसे कंट्रोल में रखता है और इसी तरह से काम चलता है, ऐसा उनका कहना है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल के बारे में उन्होंने कहा कि दिल की सुनिए लेकिन फैसला दिमाग से कीजिए, क्योंकि दिल मंजिल चुनता है और दिमाग वहां तक पहुंचने का रास्ता बताता है, सही रास्ता चुनता है। हमारी और साथी कह रही कि मैं ना तो रूठती हूं और किसी को मनाना भी नहीं आता। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, ना इस चीज से मतलब ना उस चीज से मतलब, अपना जीवन आसानी से जीजिए। हमारी और साथी कह रही कि आज की इबारत पर दिल की मानने का किस्सा बताना चाहूंगा। बात 2023 की है, छोटे बेटे ने MBBS का टफेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त की, काउंसलिंग सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने सीट हो गई थी, फुल हो गई थी। अन्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के टीचर्स भी राजी थे, सिर्फ मैंने अपने दिल की मानी और अगले काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और बेटा MBBS यही कर रहा है, तो जूठाना वो सच हो गया। बिल्कुल सही बात आपने कही। और जब कुछ ऐसा होता है तो हमारा दिल भी मुस्कुरा उठता है, हम कह सकते हैं। और आपके और हमारे दिल के लिए ये गीत सुनवाते हैं, बताइए किस फिल्म का गीत, किसकी आवाज़।

जिंदगी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में पापा से बहुत रूठते थे और वो मनाते थे, आज पापा उम्र के उस दौर में हैं, वो हमसे रूठ जाते हैं और हम भी उन्हें मना लेते हैं। बहुत ही प्यारी सी बात आपने ये लिख भेजी। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल है कि मानता ही नहीं, कभी कभी मेरा दिल मेरी सुनता ही नहीं, उसे जो चाहिए वही करना होता है, मैं भी मजबूर हो जाता हूँ अपने दिल के हाथों। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि क्या बातें हैं, इन्हें तो कुछ पता नहीं, बस जैसे ही सुना तो रूठने की बातें ही सुनी। वैसे रूठने तो हम भी हैं, बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं रह सकते, पर एक बात तो है, हम रूठें और कोई प्यार से मनाए उसका भी अलग एहसास होता है। कभी बच्चे रूठ जाते हैं तो उनकी पसंद का कुछ बनाकर उन्हें मना लेते हैं, और कभी डांट कर और कभी प्यार से। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल की हालत पर तो कई गीत, गजल और कहानियां लिखी गई हैं। निर्मल वर्मा का एक उपन्यास ये दिन भी पात्र के दिली हालत और मनोवेग को शानदार चित्रण पेश करता है। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाता हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात आपने लिखी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम दिल से सुनते हैं ये कार्यक्रम, गीतों की लिस्ट भी भेजते हैं, दिमाग से ज्यादा दिल से गीत चुनते हैं, क्योंकि दिमाग कहेगा कि तुम्हारी लिस्ट से गीत नहीं मैच हुए तो, पर दिल कहता है कि सब अपने ही तो हैं, कार्यक्रम भी अपना, उद्घोषक भी अपना, इसलिए जहां भावनाएं जुड़ी हों वहां दिल की चलती है और दिमाग तो होता ही व्यवहारिक है। तो ये जब आपने कहा तो हमें मन में ये सवाल हुआ कि आपके लिस्ट में से कितने गीत शामिल हुए, आप सभी ने बताया ही नहीं कौन कौन से गीत शामिल हो गए आपकी लिस्ट में से, ये तो बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल किसी से लगाना यानी दिल को कमजोर करना। हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल वो अनमोल एहसास है जहां प्रेम जन्म लेता है, विश्वास पनपता है, रिश्तों की खुशबू बसती है, वो केवल धड़कनों का घर नहीं बल्कि यादों, सपनों और भावनाओं का सबसे सुंदर संसार है। दिल में अपनापन, करुणा और सच्चाई बसती है तो जीवन का हर रास्ता रोशन हो उठता है। एक साफ दिल नफरत को नहीं बल्कि प्रेम और क्षमा को जगह देता है। यही दिल हमें दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढना सिखाता है और कठिन समय में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि एक सुंदर, संवेदनशील और प्रेम से भरा दिल भी है जो हर धड़कन के साथ इंसानियत का गीत गुनगुनाता रहता है। तो चलिए एक गीत की ओर आगे बढ़ते हैं, बताइए किसने लिखा ये गीत।

0: जाली नोट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खां के बोल, ओपी नैहर का संगीत, आशा भोसले और साथी कहने की जिंदगी के सबसे बेहतरीन फैसले तब जन्म लेते हैं जब दिल की सच्चाई और दिमाग की समझ एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दिल हमें सपने देखने की हिम्मत देता और दिमाग उन सपनों को हकीकत में बदलने दोनों का संतुलन ही जिंदगी की सबसे बड़ी समझ है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि जब कोई अपना बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा आलोचनाएं कर देता है तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक शख्स से ही रूठती हूँ, वो भी तब जब कहीं जाने की प्लानिंग करके देर से घर आते हैं, फिर 10 बार ना नुकुर करके फिर तैयार हो ही जाती हूँ। तो भाई इन रूठने मनाने पर एक गीत आपको सुनवा देते हैं, कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।
1: हाँ जी।

एडमिशन के दिन आते हैं तो माता पिता का बच्चों पर दबाव बढ़ जाता है। अक्सर माता पिता ये चाहते हैं कि जो विषय वो तय करें बच्चे वही विषय चुनें और आगे की पढ़ाई करें। एक छात्र के जीवन में सबसे मुश्किल समय तब होता है जब उसे अपने आगे के रास्ते का चुनाव करना पड़ता है, जब उसे अपने लिए खास विषयों का चुनाव करके पढ़ाई की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है। और तब अगर माँ बाप के दबाव में फैसला किया तो बच्चों की प्रतिभा इस दबाव और अनचाहे विषय के तले गुट्टी चली जाती है। हम अपने बच्चों को अपनी मर्जी से अपने करियर के चुनाव के अवसर आखिर कब देंगे?

हर बच्चे में एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, किसी न किसी विषय में उसकी दिलचस्पी होती है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा कलाकार हो, बहुत अच्छा अभिनय करता हो, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता हो, कोई बहुत अच्छा लिखता हो, कोई तकनीक में बहुत अच्छा हो। जाहिर है कि हर बच्चे के भीतर छिपे प्रतिभा के इन बीजों को सही तरीके से पोषित करना अनिवार्य होता है, लेकिन हमारे यहाँ

जीवन में ज्यादा पैसे कमाने और ज्यादा प्रभाव और रसूख कमाने पर जोर दिया जाता है। एक जमाना था जब डॉक्टर इंजीनियर के सिवा तीसरा करियर नजर ही नहीं आता था। आज भी माँ बाप या परिवार के बुजुर्गों का बच्चों पर दबाव रहता है कि वो कोई ऐसा करियर चुने जिसमें ज्यादा पैसे कमाने के अवसर हों और जिंदगी ज्यादा सुख सुविधाओं में बीते। ये नहीं देखा जाता है कि बच्चे का मन और उसके सपनों की उड़ान क्या है। अगर बच्चों को आजादी दी जाए अपना करियर खुद चुनने की, तो हो सकता है कि वो आगे चलकर बहुत ज्यादा तरक्की करें।

बहुत ज्यादा दबावों में प्रतिभा का विकास नहीं होता है, बहुत ज्यादा उम्मीदों का बोझ होता है, तब भी कहीं न कहीं बच्चों की प्रतिभा है। ये ठीक है कि माँ बाप बच्चों की भलाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक सुविधाजनक जिंदगी बच्चे जिए जिसमें किसी तरह का कोई अभाव ना हो, कोई परेशानियां ना हो, लेकिन बच्चों को आजादी तो होनी ही चाहिए कि वो अपने मन से तय करें कि वो अपनी जिंदगी की राहों को किस दिशा में ले जाना पसंद करते हैं। बस माँ बाप को चाहिए कि वो इस दिशा को निर्धारित करने में बच्चों का थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर दें और उन्हें एक सही नजरिया प्रदान करें, बच्चों को सही हालात दें आगे बढ़ने के, और फिर देखिए कि वो किस तरह से अपने सपनों की उड़ान भरते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान

0: वैट को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माता आयतकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
5: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओ एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इन्फॉर्मेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 30 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13 सभी बीएलओ को उनके इनोमिनेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
1: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीषा।
6: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर अवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
7: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान अनन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नवजौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
6: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्वकप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
9: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
10: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, डारा डारा डारा, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हन्ने हन्ने हन्ने प्यार हो गया। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हन्ने हन्ने हन्ने प्यार हो गया।

0: मैं कैसे उसकी बातों में कहता हूँ तुमको लेने दो। हा हा हा खोई वो कैसे मेरी बातों में कहता हूँ तुमको लेने दो। हा हा हा क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में कहता हूँ तुमको लेने दो। हा हा हा हमसे वो थी और रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। याने याने याने प्यार हो गया
1: ओ मनु तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। मनु तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा।
2: ये

0: हार्ट धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह, हम थे वो थी और हमारा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: ओ मन्नू तेरा हुआ, अब मेरा क्या होगा, मन्नू

0: में फिर अपना अपना हाथ, उसने खींचा मैंने खींचा, हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और अनूप कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
3: कैट, कैट माने बिल्ली।
4: आर ए टी रैट, रैट माने चूहा।
3: सी ए टी कैट, कैट माने चूहा।

0: कैट माने बिल्ली, अरे टिरैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।
1: मैड मैड, मैड माने पर...

GOAT, goat, goat माने बकरी, LION, lion, lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?

0: ओ जाने जिगर तेरा क्या करे।
1: डरो ये सोचा करो हमें क्या कहे ये दुनिया।
0: बी ए डी बैड, बैड माने बुरा। बी यू टी बट, बट माने लेकिन। अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।
2: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में दिल्ली का ठग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: बम्बई का बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, गुनाने लगती है। जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न आया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। श्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी जुलाई से शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे लाजवंती फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की में विविध भारती पर सुन रहे हैं।

मुकेश की आवाज में बेदर्द जमाना क्या जाने फिल्म का गीत आप सुना। भरत व्यास ने इसे लिखा, कल्याण जी वीरजी शाह का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजें, फिल्म उजाला।

जाओ यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है।

प्यार पे सब कुछ है कुर्बान, हम भी हैं दिल के शाहे जहां। प्यार पे सब कुछ है कुर्बान, जरा सी है गरीबी यही है कम नसीबी, जरा सी है गरीबी यही है कम नसीबी।

जाने कैसा है ये जहान, जीना मुश्किल मौत आसान। जाने कैसा है ये जहान, जीना मुश्किल मौत आसान। हम फिर भी जी

0: कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ यारो सूरत हमारी।
1: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली, बस कुछ ही पलों के बाद।

0: मेरी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है नेहा शर्मा। तो नेहा, तुम्हें भी बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना।
1: मंजरी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मिली, जैसे बारिश बहुत दिनों के बाद से मिल रही है।
0: बिल्कुल। और देखो, कहीं कहीं पे देखो बारिश अभी भी नहीं हुई है, तो गर्मी से परेशान है। तो बस लगता है कि यही प्रार्थना रहती है कि सब जगह पे बारिश हो, जिससे सबको आराम मिले
1: जी,
0: है ना। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी पानी उन्हें मिले, वो स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, हरे भरे रहे। और आज तुमने देखा नेहा कि सुबह इतनी सारी लेडीज जो थी वो एकदम तैयार होकर जा रही थी और हाथ में पूजा की थाल भी थी
1: जी।
0: तो तुम समझ गई होगी कि आज क्या विशेष खास दिन था उन लोगों के लिए।
1: बिल्कुल, आज वट सावित्री का व्रत है जिसमें बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की।

0: और कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ सकते हैं। वो सालों साल रहते हैं, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा धरती पे के साथ समाई होती हैं कि सालों साल रहते हैं, तो एक तरह से प्रकृति को पूछकर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है आमतौर पर। और गुजरात में भी ये पूजा, महाराष्ट्र और गुजरात में ये पूजा पूर्णिमा के दिन में की जाती है, बाकी जगह अमावस्या मतलब 15 दिन पहले
1: उस साइड में अमावस्या में होती है, यहाँ पर आज के दिन होती है। तो पेड़ों का जो महत्व है वो तो देखो, बरगद की जो जटाएं होती हैं उनसे भी कई सारे वृक्ष उनके निकलते हैं, पनपते हैं पौधों में, और ऑक्सीजन देता है ये पेड़। तो पहले के कहा जाता कि घर से निकल के औरतें जाएंगी तो वहां पूजा करेंगी, तो जब किसी पेड़ की पूजा करते तो उसको काटा नहीं जाता है, तो इस तरह से पेड़ की रक्षा भी होती है। तो कहना चाहिए कि आज के दिन हम अपनी सभी बहनों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, है ना
0: जी? बिल्कुल, बधाइयां हमारी ओर से। और क्या क्या विषय हम लेकर आए हैं आज, ये भी बता दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो प्रादेशिक व्यंजन में जो हम आज लेके आए हैं, प्रयाग उत्तर प्रदेश की दाल की कचौड़ी और आलू की रसेदार पतली पतली सब्जी जो होती है वो, और समोसा चाट।
0: देखिए तुरंत बधाई देने के बाद, व्रत की बधाई देने के बाद जब व्यंजन की बात कर दी गई है तो सखियां थोड़ा हमें माफ कर देंगी। और इसके साथ साथ विषय है विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझें, इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं, और एक गंभीर मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं, वो है व्यसन, जो कि एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है।
1: और कथा सुधा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक आज की कसर, ये कहानी सुनेंगे। लेकिन जैसे कि मौसम ने करवट ली है, यहाँ पर ले ली है और जहाँ पे अभी नहीं ली वहाँ पर भी लेगी, तो क्यों ना पहले एक गीत सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं।
0: ये गीतों के माध्यम से हम हर जगह बरसात को न्योता दे रहे हैं।

0: तो मंजरी जी, ये बात तो हमने कर ली कि बरसे फुहार हर जगह, और अब क्या किया जाए?
1: अब हम सबको कथा सुना में कहानी जो है हमारी वो सुनाएंगे एक आज की कसर
0: जी।
1: तो लीजिए सब लोग कहानी सुनिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
0: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
3: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी, मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं, उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्ज्वल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं।

0: महाशय यशोदा नंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिखकर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था, शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे, लोग जमा हो गए थे, महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदा नंद को बधाइयां दे रहे थे।
1: वाह भाई यशोदा नंद, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए?
1: हाँ।
2: अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे।
1: हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है, ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की माँ नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर।
2: अजी, कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए। मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे।
1: खूब समझ रहा हूँ, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। लड़की वालों का भी कुछ है?
2: अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है।
1: सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों?
2: मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए।
1: हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए।
2: तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है, केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।
1: हाँ हाँ, सही है।
3: ये भी लेम एक्सक्यूज है, मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा?
1: महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है।
4: 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है।
3: हाँ, मेरा तो ये निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूँ। मैं उसे तोड़ना चाहूँ भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूँ, ये रुपये लूँ तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूँ।
1: अब के कॉन्फ्रेंस आपको सभापति न बनाए तो उसका घोर अन्याय है।
3: हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
0: इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहां महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की।
3: पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरून क्या चीज है, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में

0: में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए।
1: मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे?
0: अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। का अत्याचार है, इसे लोभी धन पर गिरने वाले बुद्धा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर ये सब बुर्द फरोश हैं।
2: व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान, मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा।
3: प्रिय बंधुवर नमस्कार, आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की दृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष में मेरे साथ क्या रियायत होगी? मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए।
2: महाशय यशोदा नंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा, चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
0: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी वकील का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान, जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था।
4: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा।
1: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले।
4: भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला।
1: वाह वाह वाह वाह, यहाँ भी चलते हुए?
0: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए।
1: बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना। सुनो, तुमने यह कागज कहाँ पाया?
3: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं।
0: वो ये कागज था? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था, तूने ड्रॉर में से क्यों निकाला इस कागज को?
3: मुझे मेज पर नहीं मिला।
0: तो मुझसे क्यों नहीं कहा, ड्रॉर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसे खबर लेता हूँ, तुम भी याद करोगे।
4: अरे भाई, ये और क्या है, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो।
1: शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे, धोखाधड़ी से नहीं।
4: मिल तो गया था पर बस एक आंच की कसर रह गई।
1: सच बताऊं,

0: ईश्वर पाखंडियों को यों ही दंड देता है।
1: ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कलेख लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे।
2: ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा।
3: ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे यही आश्चर्य। लीना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ।
0: मक्कार का मुंह काला।
2: हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है। बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलाई खुल ही गई, बस एक आंच की कसर रह गई।
4: एक आंच की कसर, मुंशी प्रेमचंद की कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो मंजरी जी, क्या संदेश प्रद कहानी थी?
5: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे।
4: जी।

0: तो मंजरी जी सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए
1: भाई। बातें तो हमारा जो विषय है व्यसन एक गंभीर समस्या है नेहा, और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है
0: जी।
1: और विशेष रूप से युवाओं युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं, और नई पीढ़ी जिसे का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उसे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी क्लब रिसॉर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा सकता है, ना ही हो सकता है। और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखावा होता है या कोई कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तम्बाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ये जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है, और ये जो लत है वो बड़े नुकसान करती है। जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है। निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी पड़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाता है, कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे संबंधित और बातें करेंगे, लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: सखी सहेली और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की, हाँ। तो नेहा इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप लेकर के चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर, हाँ। ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी वो लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए, हाँ। और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनका अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये फैशन नहीं है, फैशन आप और चीजों का कीजिए, लेकिन ये चीज, इन चीजों से आप दूर रहिए, और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए जिससे कि आपका नाम रोशन है, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें।
0: और कई बार इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का

0: सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीजें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं ये चीज सही नहीं है, तो हमें इससे बचना है। तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ है, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है। ऐसा लगता है कि वह कितनी अच्छी तरह से कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा युवाओं का जो नजरिया बदल रहा है उसके लिए ही वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं, तो बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे, तो ये जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या फिल्मों के जरिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीजें करना लगता है उन्हें जरूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं करे, एक किरदार दिखाया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो इस किरदार में आपको क्यों ढलना है,
1: क्यों ढलना है? और नेहा, जब कोई इस तरह की चीजों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो उसके वो सांस तो लेता है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है। आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अब घर में आप अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क करता है, किसी सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का देखिए विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो कुछ अच्छी चीजों का हम, क्योंकि किसी भी चीज की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीजों बुरी आदतों के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी के संगीत के साथ आप कर सकते हैं, या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज्यादा दीवानगी पाल सकते हैं, बस उसको आप उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फायदेमंद भी होगा। हमारे साथ लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है, और इसमें मादक पदार्थ व्यसन के और व्यवहार संबंधी व्यसन, तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए, यानी कि व्यसन मुक्ति के बहुत से केंद्र हैं वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है, तो एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है, इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य भारी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, तो भी मूल तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए या फिर से क्यों ना उस ओर बढ़ा जाए। तो वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है। छोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन छोड़े रहना थोड़ा मुश्किल है, तो वहां संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उससे दूरी बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है, स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं तो दुख होता है, चर्चा के इंतजार में इन्होंने लिखा। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे, तो वो तो हमने सुनाई दी है,
0: ये सब तो हमने सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन की
0: भाई,
1: बात बताता है ये गीत कितना अच्छा मंजे जी है ना।
0: बिल्कुल, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना बहुत बड़ी बात है। इस
1: जी
0: गीत से भी संदेश मिलता है। और देखो, जब विवाह जो है वो बंधन नहीं, रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच
1: हाँ
0: तो यह है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं, बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहां केवल दो लोग ही नहीं, बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियां, दो आदतें और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का पहचान खो देना नहीं, बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहां प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहां विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए, है
1: वाकई
0: ना?
1: मंजरी जी। और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है, और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। कहीं हो सकता है वो कुछ अलग काम करते हो, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हो, तो ये समझिए कि उनकी उनकी वो आदतें हैं। एक खास उम्र तक आप पहुंच चुके हैं और वो भी, तो एक जो आदतें वो नहीं बदलते हैं, तो उन्हें स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
0: वो
1: वही
0: भी
1: सब
0: अच्छा है।
1: है
0: और दोनों
1: जी।
0: को पहल करनी पड़ती है
1: हाँ
0: रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी नेहा एक दूसरे का हाथ
1: हाँ
0: थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाए, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताए, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई कोई जो है वो कैद नहीं है, बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जहां दोनों का सम्मान समान सम्मान होता है, समान अधिकार है, और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी जब शादी के लिए वो समय आए, तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना?
1: जहां तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि छोटी सी बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नजरिए को देखना जरूरी है, और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, न कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जरतारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है। उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्होंने तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है, जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है। और वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई ये बहुत ही अच्छी परंपरा है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो दिलों, दो सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं, क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं, तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना। इसलिए विवाह बंधन नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने, संजोने और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है। नेहा,
1: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती है ससुराल को और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती, समय लगता है। रिश्ते नहीं समझती बल्कि एक बंधन समझती है। अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं, लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये नहीं समझते कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें माने और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें। लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना, और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना थोड़ा समय लगता है, ये लड़कियों के लिए भी नया होता है। ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया, क्योंकि आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर में जा रही हैं और उन्हें तो पूरे समय वहां रहना है, जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है। तो कभी कभी आने में तो इंसान 2-3 दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहां रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
0: तो वो
1: एक घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना।

0: तो
1: ये जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें भी हो जाती हैं, लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही
0: बिल्कुल है। और खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। हमारे एक साथी कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जड़ तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है उसे तहे दिल से निभा पाती, पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला संदेश लिया।
1: हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता या बोझ मानने के बजाय से जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं तब विवाह बंधन नहीं जाता है।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते हैं तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती है तो हम संभालते हैं। तो कहना चाहिए, सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में।

0: लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए शादी के बाद। वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे की बातों को समझे और कुछ भी ना छुपाएं। आप सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ ये हमेशा सच बोलती है, तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर।
1: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है चाहे वो बात लग रही हो ना लग रही हो या वो बात कैसी भी हो ये सच हमें बता देंगे या ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ तो उसे स्वीकार करें क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
0: बिल्कुल।
1: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
0: मूल मंत्र है
1: विवाह को अच्छी तरह से, बंधन नहीं है लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह जिसमें।
0: अब देखो विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझे, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
1: खाना तो बनाएंगे लेकिन गाना कब सुनाएंगे?
0: तो चलो पहले गाना सुना देते।
1: बिल्कुल।

0: तो देखो,
1: मनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए।
0: चलो फिर बना देते हैं दाल की कचौड़ी। इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूंथ लेंगे। और जो भरने की सामग्री है उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से। और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए, और तलने के लिए तेल। और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको एक वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गरम करिए, इसमें हींग, जीरा, सौंफ, धनिया और बेसन डालकर भूनिए। इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो हैं वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको तब तक भूने जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए, है ना। और जब ये अच्छे से भून जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, इस दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आंच पर आप तल लीजिए, है ना। और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के साथ।
1: हम रेसिपी बताएंगे, पर एक बात यह है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए, अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत नहीं, जिसको IBP हो उसे आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से।
0: हाँ, लेकिन जिसको फीकी लगेगी वो क्या बना दिया।
1: आलू की

0: के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं। टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग आधा छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना आधा छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं, और नमक आपके स्वाद के अनुसार, अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला तेल आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे। सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए। तो तेल गरम किए कढ़ाई में, हींग जीरा सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए, और इसमें कटी हुई हरी मिर्च अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए, और टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है। फिर हल्दी धनिया लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए, और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दे। फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़कर, और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए, और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए। अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालें, गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है, कचौरियां तो बन ही चुकी हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो आप दोनों ये सारी चीजें खाइए, और देखिए समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए, छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को मिलाकर खाइए।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: तो बस कार्यक्रम से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
0: नेहा शर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बता दें कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो आईबीएस के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारे जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूं फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता। एक दूसरी बात ये भी हमारा है कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था आईबीएस, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द। एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार को दिखाइए।
1: जी, तो ये आपने बड़ी जरूरी बात कही है और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहां मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज फटने लगती है, खराब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहां से हमारी आवाज निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाए, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट्स कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ईएनटी को जाके देखते हैं, ये गला खराब है। ईएनटी जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहां से खाने की पाइप शुरू होती है वहां पे काफी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला खराब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है। तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
1: तो मतलब आवाज की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना जरूरी होता है?
1: नहीं, आज के जमाने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है, क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयां निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के जमाने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं अल्सर। ज्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयां लेते रहते हैं, तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है और रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीजन हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे क्योंकि जो एसिडिटी की दवाइयां हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने जमाने में ये दवाई नहीं होती थी तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के जमाने में अल्सर की सर्जरी इज ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर ठीक हो जाते हैं।
0: जी जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, पेट शुरू होता है छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा, कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है।
0: जी जी,
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है, काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, That tells you कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफी हाई है।
0: और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट इन मोशन होता है। चूंकि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी। तो स्लीप इज अ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूं कल रात को, ठीक से सोया हूं कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट डे मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूं अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
0: ओके, तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है कुछ?
1: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट खत्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
0: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
1: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जो हम सिंपल टर्म्स में देयर इज गुड बैक्टीरिया एंड देयर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है। तो बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं, जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया
0: जी। तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना,
1: तो मैं तो कहूंगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
0: दही
1: दही से अच्छा हाँ। कोई प्रोबायोटिक नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देयर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
0: जी बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाया।
1: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह के एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमने पहले एक्सरसाइज इंक्लूड योगा के साथ एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेस जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेस जो बोलते हैं हम, साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है?
1: हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी,
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मेरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज द मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन MRI, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज द मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी जी जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है, किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया

0: या वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटेन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
1: जी जी, और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज खास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
0: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं, मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है?
0: बिल्कुल पड़ सकता है
1: जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के? क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
0: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है इसके लिए पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? हाँ। बोले हमको खाना पचता नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है, जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं। तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की वो कलरफुल होनी चाहिए।
1: ओके।
0: मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियां हो जाएं, एक रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, जवार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
1: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए।
0: बिल्कुल, इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाया आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
1: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
0: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है, ये गाना फेमस स्कूल के टाइम पे
1: जी, और
0: काफी सुना है हमने
1: जी।

0: डॉक्टर साहब बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से या आपने उसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी?
1: हाँ, तो बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है। अभी काफी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं, हम हमारे एंडोस्कोपी के पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट एंड राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेते कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं, छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर मेजर करती है, क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और वो पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है, वो बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 आवर्स

0: आज हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स हो, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है। तो उसको 24 आवर पीएच मेनोम पीएच प्रोब बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। There are many other ways to detect the esophagus.
1: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
0: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है। कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है। अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको आईबीडी बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस आईबीडी वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर आईबीडी की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है। ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज नॉट रियली अ डिजीज, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है।
1: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
0: शायद मेरी शादी का ख्याल
1: सुनते हैं डॉक्टर साहब ये गाना।

जाल बिछा इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय।

0: कसम, खाओगे ना?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: हाँ,
1: तेरी कसम, आऊंगा।
2: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईपीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी की जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
3: तो ये जितनी भी ये बीमारियां, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं। कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। आई थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, के कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा न लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये क्या समस्या है?
3: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सिर दर्द हो गया है और एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चला जाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ए पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है। मैंने अपनी सारी किताबें छांट ली है, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है। तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो, क्योंकि माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो, अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपना हेडेक शुरू हो जाएगी ना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स। इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
2: जी, हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
3: कुछ तो है, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डाइट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
2: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है। तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
3: अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिन कैन कॉज एसिडिटी। तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ।
2: जी जी जी, और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है, या फिर जो लोग नहीं लेते हैं उन्हें भी होता है? तो ये
3: तो अगर अब लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। दोनों सेम चीज करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज होता है। एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। द ओनली वे हम अलग कर पाते हैं कि अल्कोहल है नॉन अल्कोहल, पेशेंट को उसके हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए। वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे? धूम्रपान, टबैको, सेम चीज। धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहां पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं। ये सबसे डेंजरस है बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
2: जी जी डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
3: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफी कैंप्स करते हैं। आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज्यादा दिखता है जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीकोरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस सी ज्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम देखते हैं, फॉरेन में ज्यादा दिखता है, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही होता है, ये कॉमन है।

0: स्टोन है, इस ये भी वजह होती है क्या?
1: बिल्कुल हो सकती है। कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खाके, तला हुआ खाके, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं।
0: जी जी, और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
1: नहीं, जरा भी नहीं। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ नॉर्मल कटते रहती है।
0: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
1: ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए और मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट है जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले। अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ। एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ, ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी, दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
0: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को? मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी या कुछ नहीं?
1: नहीं नहीं, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में, कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि वो वेल हाइड्रेटेड।
0: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
1: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज ऐसा सेंसिटिव थिंग, अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो तो सारा नॉर्मल होता है। इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
0: ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
1: चले चलो ये गाना सुना है, चले चलो,
0: चले चलो लगान का,
1: लगान का,
0: लगान फिल्म का गाना चले चलो।

0: डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्या है।
1: तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बार। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल जा रहा ये तेल अच्छा है ये ले ले इसे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है, खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाई है, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासिटामोल है, 500 ml पैरासिटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है।
0: और
1: स्टेरॉइड भी आता है, और ऐसी कोई चीज आप अपने मुंह में डालोगे और स्वालो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि इट हैज टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड, मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देखे फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजीली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या हो गए। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट, इट इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड।
0: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत

0: अपॉर्चुनिस्टिक।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पंचम के गानों का अपना एक संसार है, कुछ चुलबुले गाने, कुछ उदास जो आंसुओं की नमी से भीगे हैं, कुछ ऐसे गाने जिनमें जोश छलक छलक पड़ता है, कुछ ऐसे गाने जिनके कंधों पर सर रखकर आप अपने डूबे हुए दिल को सहारा दे सकते हैं। पंचम गानों के जादूगर थे। आज के छाया गीत में पंचम के कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप पंचम को खूब मिस करेंगे, बेकरार होकर याद करेंगे और नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का जिसने हमें दिया ऐसा विरला संगीतकार, जिसके हैं ऐसे महक।

तो बीतते जाते हैं पल, कैलेंडर के पन्ने बदलते चले जाते हैं। जाने क्यों कुछ पल कभी बीतते नहीं, वो मन के आकाश पर ठहर जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं कुछ लम्हे। वो न कभी अतीत बनते हैं, न कभी यादों में तब्दील होते हैं, वो लम्हे बस मन के कैनवस पर धड़कते चले जाते हैं।

आंखों में सपने भी होते हैं और आंसू भी। दुनिया भर के दुख, धोखे, तकलीफें, अफसोस जमा होते रहते हैं मन के किसी कोने में। समझ में नहीं आता कि कब कैसे ये सारा दुख घुलेगा। फिर किसी दिन बहता है जीवन का सारा दुख आंखों से। आंखों में सपने भी होते हैं और जीवन का ये खारापन

छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए

0: इंतजार का दायरा बढ़ता चला जाता है, इंतजार की परछाई बड़ी होती चली जाती है। कभी कभी ये इंतजार खत्म ही नहीं होता, दिन बोझिल होते चले जाते हैं, शामें उदास हो जाती हैं और रातें एकदम सुनसान। जिसका है इंतजार, जब वो मिल जाए तो खिल उठता है दिल, चमक जाते हैं लम्हे और महक उठते हैं दिन रात।
1: वो मेरा इंतजार।

गानों का अपना नशा होता है। जरूरी नहीं है कि ये गाने हमें बार बार सुनाई ही पड़ें। कई गाने सुने बरसों हो जाते हैं, फिर अचानक किसी गाने की कोई लाइन कहीं सुनाई पड़ जाती है और अटक जाता है मन। गानों के साथ जाने कैसा रिश्ता होता है हमारा, जैसे कोई भूला हुआ ठिकाना, जैसे भूली बिसरी कोई खुशबू, जैसे कोई भूली बिसरी याद।

जब निकले अपने घर से तो एक अलग ही तरंग होती है मन की। घर से निकलते ही मन सारी उलझनों से बाहर निकल आता है, फिर हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। सफर में हूँ तो अलग ही गाने जुबां पर आते हैं।

0: किनारा फिल्म मासूम
1: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार
0: फिल्म फिर कब मिले

0: प्रस्तुति कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: सभी सुनकर इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं श्रेया घोषाल के गाए सनक फिल्म से, बोल रश्मि विराग के संगीत जीत गांगुली का।

अगली पेशकश मोहम्मद रफी के स्वर में आरडी बर्मन के संगीतबद्ध किए गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म का नाम है प्यार का मौसम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब सुनिए सिंघम फिल्म में अजय गोगावले और श्रेया घोषाल को, गीतकार स्वानंद किरकिरे, संगीतकार अजय अतुल।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए सुनिए योगेश कलिका और आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया मंजिल फिल्म का गीत, आवाज किशोर कुमार की।

0: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
1: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ
0: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
3: जब वी मेट, अब सुनिए इस फिल्म का गीत, बोल इरशाद कामिल की, संगीत प्रीतम का, आवाज़ें श्रेया घोषाल और साथियों की।

अभी आपने लता मंगेशकर को बेमिसाल फिल्म में सुना। तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने आप सुनेंगे 6:05 से। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।

0: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: समारोह में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाशने, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं, साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्य को भी मान्यता देते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन, रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। अब सुनिए तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने। और प्यार हो गया।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अब सुनिए किशोर कुमार का गाया गीत। फिल्म का नाम है सफर, बोल इंदिवर के।

0: में
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
2: जाने
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया ताल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। तर्ज बनाई है ए आर रहमान ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर

आकाशवाणी रांची का ये विविध भारती केंद्र है FM 103.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। मन भावन सुन रहे सभी श्रोताओं को सुमेधा का प्यार भरा नमस्कार। आइए आज के सफर की शुरुआत करें फिल्म टैक्सी नंबर 9211 के गाने से। विशाल ददलानी के शब्द हैं, विशाल शेखर और अमर मोहिल का संगीत और स्वर के और सुनिधि चौहान के हैं। इस गाने को सुनना चाहा है अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, रेयांश ठाकुर, ज्योति ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने।

0: गुलजार की रचना को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाज़ें शंकर महादेवन, सौम्या से और लॉय मेंडोसा के हैं। फिल्म बट्टी और बबली से इस गाने को सुनना चाहा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मीका वीरक, बलविंदर वीरक, जयतेग वीरक और हरविंदर मीका ने।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, परमानंद आर्य, अभिनंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और रांची से श्रीजीत, शुभोजीत, अभिजीत और अरिजीत की फरमाइश पर पेश है अगला गाना। निरंजन अयंगर की रचना को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें राहत फतेह अली खां, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा के हैं। फिल्म माई नेम इज खां से सुनिए ये खूबसूरत नगमा।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना। दम्भ का स्तंभ खंडम दम त्रिशूल।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: संगठना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत, शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में आप सुनेंगे अगला गाना, फिल्म दिल चाहता है से। इस गाने को सुनना चाहा है ग्राम दतरेंगी से। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र वर्मा ने

मन भावन कार्यक्रम का आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल्ली सिक्स से। मोहित चौहान की आवाज है, बोल है प्रसून जोशी के और संगीत एआर रहमान का है। इस गाने को सुनना चाहा है बाबा कूटी उफरा से प्रेम साहू, तुलसी साहू, यमुना साहू और हेमलता साहू ने। मन भावन का आज का सफर आपने तय किया सुमेधा के साथ। आप इस गाने का आनंद उठाएं और मुझे दे अनुमति। नमस्कार।

FM 103.3 MHz पर आकाशवाणी रांची का ये विविध भारती केंद्र है। जयमाला कार्यक्रम के लिए आपको ले चलते हैं हमारे मुंबई केंद्र।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: अभी आपने हरिहरन के स्वर में देशभक्ति गीत सुना, फिल्म थी रोजा। बोल लिखे थे पीके मिश्रा ने, संगीत एआर रहमान का था। लीजिए प्रस्तुत है भारतीय सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत और संगीत कैलाश खैर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सेना।
1: अभी आपने भारतीय सेना पर आधारित गीत सुना, स्वर गीत और संगीत कैलाश खेर का था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत पामेला चोपड़ा, मनप्रीत कौर और साथियों के स्वर में। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया है जतिन ललित ने।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: जयमाला कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए पारस मड़ी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में। असद पोपाली ने गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: वो जब याद आए

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई

0: फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
1: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
2: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। जयमाला कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

जयमाला कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत, आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की फिल्म का नाम रंग।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और ये है जयमाला कार्यक्रम की अंतिम पेशकश माशूक फिल्म से। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, वो लिखे हैं गौहर कानपुरी ने, संगीत श्याम सुंदर का।

0: FM 103.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी रांची का ये विविध भारती केंद्र है। आइए सुने कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से बुनियाद कार्यक्रम लेकर हंसते खेलते आपके घर आंगन में आ गया। हंसना खेलना इसलिए जरूरी है कि उससे आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे और इसी सोच के साथ बुनियाद कार्यक्रम को सुनेंगे, जिसमें हम नए नए कोर्सेज की आज चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से, पिछले एपिसोड में हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, जी हाँ, इसके बारे में बताया था। बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बताया था। इसके अलावा एक कोर्स और है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। एक बार फिर से आप लोगों के अनुरोध पर आपने क्वेरीज की, बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए और कहा कि एक बार फिर से सारी जानकारियां दिलवाई जाए, तो आज फिर से हम एक बार उसी पर चर्चा करेंगे। और वो कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले दो बातें हम कर लें। बहुत सारे फोन कॉल्स आए जब हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बातचीत की थी। हाँ, डॉक्टर नीरज से हमने बातचीत की थी और जानकारियां दिलवाई थी। पूरे बिहार से फोन आया वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था, अच्छा लगा। सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सोमवार के दिन बने रहना होगा इसी समय इसी मीटर पर। एकदम आपके लिए खोज कर ऐसे कोर्सेज को हम लाएंगे, और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में ये कोर्सेज इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं आप युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए। जी हाँ, और तीन कोर्सेज हम बार बार कह रहे हैं, हमने बातचीत कर ली है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर। ढेर सारे फोन आए हैं, सारे सवाल हमने रखे हैं। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एक नया कोर्स है, और आज जिस पर चर्चा करेंगे वो है फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, इस पर आज चर्चा करेंगे, विशेषज्ञ को बुलाएंगे। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं, राजेश बार बार कहता है कि भैया, छोटे छोटे भाई, बड़े बड़े भाई, बड़े बड़े चाचा, बड़े बड़े दादा, अब आप समझ लीजिए कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। हाँ, टेक्निकल पढ़ाई कर लीजिए, हाँ, बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा हम समझते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई की गई ना, तो विशेषज्ञता हासिल होगी, और वो विशेषज्ञता आपको जीवन में खड़े होने का आधार, मजबूत बुनियाद देगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर पहले बता रहा हूँ, 1800

0: आप इतना कंसर्न है इस कार्यक्रम से, क्योंकि हम आपके फायदे की बात करते हैं। बहरहाल चलिए आज बातचीत करते हैं फिजिशियन, हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, इस विषय में क्या पढ़ाई है, कितने दिन की पढ़ाई है, रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अगर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्या सिस्टम है, सारी चीजों पर बात करेंगे। चलिए आज के अतिथि से सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय।
1: नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुहा।
0: उम्मीद है आप ठीक से होंगे। एक व्यक्तिगत सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। उस जमाने में, हाँ, ये कोर्स जो है ना, न कोविड था न कुछ और चीजें थी, तो इस तरीके के कोर्सेज को चुनने के लिए आपको किसने प्रेरित किया, क्या सोच थी उस समय?
1: नहीं, वो तो मैं तो जब मैं बचपन में जब क्रिकेट देख रहा होता था या कोई भी स्पोर्ट्स देख रहा होता था, तो जैसे किसी खिलाड़ी को चोट लगी तो मैं देखा कि कोई जना आया, उसने कुछ लगाया, करा एक्सरसाइज, कुछ कराई, नौ खिलाड़ी वो फिर से खेल रहा है। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये क्या है, तो पता चला कि ये फिजियो है। तो फिर मेरा उस वक्त से थोड़ा सा इंक्लिनेशन आया कि इस कोर्स के प्रति कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए, और फिर जाके फिर मैंने ये कोर्स।
0: नीरज जी, जमाना बदल गया, बहुत पानी बह गया, हाँ, आज टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, और टेक्निकल पढ़ाई के विषय में क्या कहना चाहिएगा आप?
1: क्योंकि अब हर कोई चाह रहा है कि हमें इमीडिएटली पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, और इसके लिए टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन, उसी के बाद ही हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे।
0: टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर जॉब, फॉर ए बेटर फ्यूचर, है ना? इसीलिए कहते हैं भैया टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इधर उधर मत तको। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ अगर आपने किया है तो हेल्थ सेक्टर में टेक्निकल पढ़ाई की भरमार है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, और आज चर्चा करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, हाँ, इस विषय में क्या, कहाँ, कैसे हो सकता है, कुछ भी बताएंगे। बहरहाल नंबर एक बार बताएं, फिर डॉक्टर नीरज से हम पूछेंगे बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के बारे में। नंबर नोट करें 9431899002, 9431899002, और 1800121051। डॉक्टर नीरज बताइए, हाँ, हमारे सुनने वालों को, युवा साथियों को, उनके माता पिता को बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के विषय में।
1: हाँ, ये बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज ये 4 साल का कोर्स है, और इसमें जिस 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव है MBBS का। जैसे इस कोर्स को करने के बाद जो फिजिशियन एसोसिएट होते हैं वो पेशेंट की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये दोनों काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन। यानी इनका काम है फिजिशियन को एसोसिएट करना, यानी फिजिशियन को असिस्ट करना। कई दफा ऐसा होता है, बहुत सारे दूर दराज के सेंटर होते हैं जहां पर प्रोफेशनल या हाईली प्रोफेशनल जो फिजिशियन की पहुंच नहीं हो पाती है, तो वैसे दूर दराज के सेंटर में, कम्युनिटी सेंटर्स में, ये फिजिशियन एसोसिएट अपना रोल अदा कर सकते हैं, जहां वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए पेशेंट को देख के उनकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, और कंसल्ट करके जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, जिस फिजिशियन के अंडर वो काम कर रहे हैं, उनसे कंसल्ट करके उनको वो इलाज भी दे सकते हैं।
0: कितने सीटों के साथ आपने इसकी शुरुआत की है इस यूनिवर्सिटी के अंदर?
1: ये हमने अभी 30 सीटों के साथ स्टार्ट किया है।
0: क्या एलिजिबिलिटी है?
1: हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 45% मार्क्स एग्रीगेट।
0: कैसे बच्चे आ सकते हैं?
1: नहीं, जो बिल्कुल जो अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए और पेशेंट वेलफेयर के लिए, जिनका मोटो है कि वो चाहते हैं कि हम समाज का कल्याण करें, हम पेशेंट का कल्याण करें, वो बच्चे इसमें एडमिशन लें, क्योंकि इसका मेन उनका रोल है पेशेंट वेलफेयर, पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट केयर।
0: अपॉर्चुनिटीज पढ़ने के बाद?
1: हाँ, इनकी अपॉर्चुनिटीज इतनी हाई डिमांड बढ़ी हुई है कि भारत में, जैसे आप सबको पता है, आप लोग न्यूज़पेपर में भी, हम लोग न्यूज में भी देखते हैं कि डॉक्टरों की कमी है, और अस्पतालों में इसलिए ट्रेंड फिजिशियन एसोसिएट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रिसेंट डेटा कहता है कि अभी तक 28%

0: प्रतिशत इनकी डिमांड बढ़ी है फिजिशियन एसोसिएट की हमारे अस्पतालों में। साथ ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों, इमरजेंसी सेवाओं और डायग्नोस्टिक सेंटरों में भी 90% तक संभावना है प्लेसमेंट की। और साथ ही साथ इनकी विदेशों में भी ऑप्शन है, जैसे इनकी यूके यूएसए जैसे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने की बहुत ही अच्छी संभावना है।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर नीरज। जानकारियां दी जा रही है, एक नया कोर्स आया है, सिर्फ 30 सीट है, ओनली 30 सीट्स है, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज का, इसके बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। टेक्निकल पढ़ाई बार बार कहते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। ढेर सारे सवाल आए हैं, आने वाले सोमवार के दिन हम उसका उत्तर देंगे। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के विषय में आने वाले सोमवार को एकदम बताएंगे ही बताएंगे। फिलहाल आइए जानते हैं डॉक्टर नीरज से, जहां 30 सीट ही आया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। सबसे पहले नंबर बता दें एक बार, 9431899002 और 1800121051। हाँ डॉक्टर नीरज, नया कोर्स आया है, हाँ सारा कुछ नया नया है, बच्चे नए होंगे, सब कुछ नया होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या तैयारी है आपके यहाँ ओवरऑल?
0: फिजिशियन एसोसिएट के लिए हमारे पास ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे अवेलेबल, जो हमारे पास क्लासरूम चाहिए वो हमारे पास है, जो लैब चाहिए वो हमारे पास है। इसके अलावा क्लिनिकल पेशेंट प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास अपना हॉस्पिटल NMCH हॉस्पिटल है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो 1200 बेडेड हॉस्पिटल है लगभग, वहाँ हमारे बच्चों का हैंड्स ऑन एक्सपोजर होने हम कराएंगे हमारे बच्चों का। क्लासेस कराने के लिए टीचर्स के लिए हमारे पास अपने फिजिशियन एसोसिएट टीचर प्रोफेशनल्स हैं, साथ ही साथ जो मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास मेडिकल फैकल्टी है, मेडिकल टीचर्स हमारे पास। चूंकि आपको पता है कि हमारा गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही बड़ा कैंपस है, इस कैंपस के अंदर हमारे पास सारी बेसिक सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, साथ ही साथ स्टाफ टीचर और उनके लिए भी एकोमोडेशन है, फ्लैट्स हैं, क्वार्टर्स हैं, और जो भी बेसिक नीड की जरूरत होती है सब हमारे कैंपस के अंदर।
1: डॉक्टर नीरज, बहुत बहुत पहले तो बधाई कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और हमें पता है कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में जब तक पूरी तैयारी नहीं होती कोई कोर्स शुरू नहीं किया जाता। लेकिन एक सवाल हम बच्चों की तरफ से पूछना चाहते हैं कि बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल पढ़ाई, अंग्रेजी में बातचीत, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी जो लेकर आते हैं और यहाँ आकर, क्या उन बच्चों के झिझक को आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में तोड़ने के लिए कोई व्यवस्था, उनकी अंग्रेजी या कोर्सेज के बारे में जानकारी, या उनके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कोई सिस्टम?
0: नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। नहीं, हमारे यहाँ हम लोग जैसे बच्चे हमारे एडमिशन होता है तो शुरू के एक महीने हम उनका सिर्फ इंडक्शन प्रोग्राम चलाते हैं, ताकि उनको हम इस कोर्स के बारे में अवगत कराएं। हम सिलेबस स्टार्ट नहीं करते हैं शुरुआत में, पहले हम कोर्स को अवगत कराते हैं, ब्रिज कोर्स काइंड आप कह सकते हैं, कि अभी चूंकि जस्ट वो इंटर पास करके इस प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन के कोर्स में आए हैं, तो उसका जो गैप है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। रहा बात इंग्लिश का, तो हमारे यहाँ के जितने भी टीचर हैं वो डुअल मोड में पढ़ाते हैं, दोनों मोड में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश, कम्युनिकेशन इंग्लिश की क्लासेस भी लगाते हैं बच्चों के लिए। और हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं सर, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं, जब वो फर्स्ट ईयर में यहाँ आते हैं तब उनसे आप पूछेंगे, जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनका क्या स्टैंडर्ड या क्या लेवल रहता है, और अभी उनका आप देखेंगे लेवल और स्टैंडर्ड, तो पीरियोडिकली दे आर इम्प्रूविंग themselves। और इस पे हमारे टीचर, हम लोग बिल्कुल मिलजुल कर काम करते हैं, और हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है।
1: थैंक यू प्रोफेसर नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप सबों के गाइडलाइन में जो बच्चे आएंगे, 30 बच्चे आएंगे, उनका सही मार्गदर्शन होगा, सही पढ़ाई होगी और करियर की नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी। अभी हमारी बातचीत चल रही थी बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, ये एक नया कोर्स आया है, इस पर सिर्फ 30 सीट है इंटरमीडिएट बायोलॉजी के लिए। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नंबर डायल करें, टोल फ्री नंबर 1800121051, और दूसरा नंबर है 9431899002, ये नंबर है, तो ढेर सारी संभावनाएं।

0: हैं टेक्निकल पढ़ाई में, युवा साथियों सोचिए, विचारिए और निर्णय लीजिए, फोन से बात कीजिए। फिलहाल थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: FM 103.3 MHz पर आकाशवाणी रांची का ये विविध भारती केंद्र है। शेष कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

0: हे राम, कितनी भीड़ है आजकल बाजार में। एक के बाद एक आदमी, मीलों तक चले जाओ, दुकान ही दुकान, और हर एक दुकान के अंदर 8-10 ग्राहक। और फिर कहीं कहीं तो क्यों मैं खड़े रहूं?
1: अजी, तो आप खड़े ही रहे क्यों में, या कुछ काम भी करके आए हैं? अरे ये क्या, ये दोनों थैले तो खाली हैं।
0: अरे ठहरो भाई ठहरो, मैं देता हूँ सामान। ये पड़ा, ये रहा साबुन तेल, और ये रहा मूंग की दाल, मूंग पापड़ मिर्ची, और ये सब्जियाँ भिंडी टमाटर।
1: उड़द की दाल लाए? इमली भी नहीं?
0: इमली?
1: फिर क्या खाक लाए हो? 5 साल हो गए शादी को, अभी तक बाजार से घर गृहस्थी का सामान लाने का भी होश नहीं है।
0: अरे तो तुम चलती ना मेरे साथ।
1: मुझे मरने की फुर्सत हो तब ना। हर महीने समझा समझा कर भेजती हूँ कि बाजार से ये सामान लाना है, वो लाना है, पर।
0: अरे पर क्या, गलती तुम्हारी है। मैंने 1000 बार कहा कि जो भी काम मुझसे कराना हो उसे ब्लैक एंड व्हाइट में दिया करो। एक पर्ची पर लिख देती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता?
1: मैं कोई नया सामान तो मंगा नहीं रही हूँ, वही रोजाना का सामान है। गलती खुद करते हो और दोष मुझे देते हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी बाजार जाओ अपनी पुरानी पढ़ाई दोहरा लिया करो।
0: पढ़ाई?
1: और क्या, सीधी सी बात है। अ से अरबी, आ से आलू, ई से इमली, ऊ से उड़द की दाल,
2: क से ककड़ी, ख से खरबूजा, ग से गधा, नहीं नहीं, ग से गोभी, च से चमचा,
0: चूना। वाह क्या खूब याद आया है, चमचा। छ से, खैर जाने दो, नहीं आता तो कोई बात नहीं। जैसे जलेबी, जैसे जगमोहन, जगमोहन।
3: बंदा हाजिर है। कहिए हुजूर, इस नाचीज को कैसे याद किया?
0: जगमोहन, आओ भाई, बड़े मौके से आए हो।
3: हम तो परोपकारी जीव है प्यारे, कहो किस कष्ट में हो? अभी सारी पीड़ा से पिंड ना छुड़ा दूं तो मेरा नाम जगमोहन नहीं।
0: अरे बात यह है कि तुम्हारी भाभी मुझे नए सिरे से पाठ पढ़ा रही है।
3: अच्छा। तो इसमें नई बात कौन सी हुई भाई?
1: देखो भैया, दरअसल बात यह है, तुम्हारे दोस्त अपनी आदत से मजबूर हैं। बाजार जाते हैं सामान लेने तो कुछ सामान ले आते हैं और कुछ नदारद कहते हैं कि भूल गया। फिर मैं इन्हें याद रखने की कोई तरकीब बताती हूँ तो तुम क्या गुनाह करती हूँ?
0: अरे गुनाह तो मैं करता हूँ जो तुम मेरी एक भी नहीं सुनती। अच्छा अब तुम ही बताओ यार, अगर मैं कहता हूँ कि मुझसे जो भी सामान मंगवाना हो उसको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दिया करो, तो इसमें क्या गलती करता हूँ मैं?
3: भाभी वैसे बात तो ठीक कहता है मेरा दोस्त।
0: तुमसे ऐसी उम्मीद थी भाई जग्गू।
1: ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी, ये भी हो जाएगा।
0: अरे तो हाथ कंगन को

0: पारसी के हाथ लिस्ट और उस हाथ सामान।
1: तो मैंने ही कौन सी कच्ची गोलियां खेली हैं? मैंने पहले ही ब्लैक एंड व्हाइट में लिख रखा है सारा सामान, अभी लिस्ट लाती हूँ।
2: अरे मारे गए यार।
3: अरे मारे क्यों गए? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अभी बाजार चलते हैं।
2: अरे मगर तुम इतनी दूर से आए हो, कुछ देर बैठते तो सही।
3: बैठेंगे बैठेंगे। देखो सुनो, यहाँ से चलते हैं, पहले रेस्टोरेंट में जाकर बैठेंगे, कुछ इधर की बात होगी, कुछ उधर की होगी और फिर काम की बात होगी।
1: ये दो थैले हैं और ये रुपए, और ये लो सामान की लिस्ट ब्लैक एंड व्हाइट में।
3: बहुत अच्छा, अभी बस हम ये गए और ये आए। उठो राकेश।
2: चलो प्यारे,

0: अच्छा जग्गू, अच्छा अब बता इन दिनों कैसा चल रहा है?
1: ठीक ठाक है, बस वो तुम्हारी भाभी की तबीयत जरा नरम चल रही है।
0: कैसे?
1: अरे बात ये हुई यार कि पिछले दिनों मेरी साली की शादी थी, हमें जोधपुर जाना पड़ा। अब गाड़ी में आजकल कितनी भीड़ भाड़ होती है कि पूछो ही मत।
0: हाँ यार भाई, पता नहीं आखिर इसका हश्र होगा क्या।
1: और फिर शादी में खाने पीने का मामला जरा अब अपना ढीला ही रहता है यार।
0: अरे भाई किसको परवाह रहती है, लेकिन यार ससुराल की शादी की बात थी, तूने माल जरूर मारा होगा।
1: अरे क्या खाक माल मारा होगा, सारा एटमोस्फेयर ही चेंज हो गया।
0: अच्छा अच्छा हुआ भाई, आजकल चेंज की वैसे भी शॉर्टेज है।
1: यार तुझे हर वक्त मजाक सूझता रहता है।
0: अच्छा अच्छा अब बता, ऐसी क्या बात हो गई थी, क्या किसी से झगड़ा हो गया?
1: अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन यार पैसे का पैसा गया और बुद्धू के बुद्धू बने।
0: अरे सो तेरे लिए कौन सी नई बात है।
1: फिर वही बात।
0: अरे सॉरी। अच्छा बता क्या हुआ?
1: होता क्या, वही ढाक के तीन बात, वही फिल्मी स्टोरी।
0: लड़के का बाप कोई फिल्मी प्रोड्यूसर होगा है?
1: अरे फिल्मी नहीं, जुल्मी कहो जुल्मी। हीरो पर बैठने से पहले उसने एक परवाना ससुर साहब के हाथ में पकड़ा दिया।
0: क्या कहा, परवाना पकड़ा दिया? सुनते हैं परवाने तो मंडराया करते हैं, क्या उसने किसी परवाने को पकड़कर आपके ससुर साहब को इनायत कर दिया?
1: कैसे दो दिन के बच्चे बन रहे हो। अरे परवाने से मेरा मतलब है स्लिप, कागज की स्लिप, और उसमें ये लिखा कि अगर 2 लाख रुपए उन्हें नगद इसी वक्त नहीं दिए तो वो बारात वापस ले जाएंगे।
0: क्या राइटिंग में, मेरा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में दे दिया?
1: हाँ जनाब ब्लैक एंड व्हाइट में दिया। हमारा तो सारा मूड ही बिगड़ गया, सोचा था कि जोधपुर घूमेंगे, कुछ दिन ससुराल में रहेंगे, सारे पैसे तो वहाँ भेड़ चढ़ा दिए और यहाँ आकर छुट्टी और कैंसिल करानी पड़ी।
0: हो भाई जग्गू, मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी है कि तेरा दिल टूट गया, लेकिन प्यारे अब ये कॉफी का दिल भी ठंडा हो रहा है, इसे मत तोड़। हाँ दे दे कॉफी वॉफी भी। अरे सुना तूने, वो वर्मा ने शादी कर ली।
1: अच्छा तो इसमें गुनाह क्या हो गया भैया, हर लड़का शादी करता है।
0: अरे मगर ब्लैक एंड व्हाइट में शादी की है।
1: क्या मतलब?
0: अरे मतलब वही कि अग्नि को साक्षी मानकर नहीं, वर्मा ने सिविल मैरिज की है।
1: यानी कि राकेश अब हर बात लिखित में होने लगी, जैसे एक दूसरे को एक दूसरे की जबान में विश्वास ही नहीं रहा। कैसा समय आ गया है जबकि आदमी की जबान की साख की कोई कीमत ही नहीं रही।
0: और एक वो जमाना था जब जबान से बेटी बेटी तक पराया हो जाया करते थे।
1: प्यारे समय ही ऐसा है, ब्लैक माने काला और व्हाइट माने सफेद, यानी काली रात और सफेद दिन। ये रात और दिन का ही तो चक्कर है जो हम सबको चक्कर दे रहा है
0: और हम इसकी चक्की में पिस रहे हैं। भाई कबीर ने ठीक ही कहा है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए और दो बाटन के बीच में साबुत बजाने को। अरे अरे पर तू उठ कैसे गया भाई, हाँ क्या देर हो रही है?
1: हाँ भैया एक जगह जाना है। अब सुन यार, अब वो बात यह है कि 50 रुपए हो तो दे देना, कुछ काम है। अब काम नहीं बना तो वापिस कर दूंगा।
0: अरे 50 तो नहीं है, पर तू ऐसा कर इसमें से 40 रुपए ले ले।
1: ला ला 40 दे दे, अब कोई बात नहीं, अभी 40 चलेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय।

0: अब मैं जरा वो लिस्ट निकालूं। है? यहां भी नहीं है, इस जेब में देखूं, यहां भी नहीं है, शायद घर पे रह गई होगी। पहले घर चलता हूं, शीला क्या कहेगी, फिर सामान कैसे लोगा। हाँ याद आया, पढ़ाई दोहरा लूंगा, आ से अरबी, आ से आलू, ठीक है एक एक किलो ये दोनों ले लूंगा। अरे भैया अरबी देना और आलू देना।
1: खिलौने वाला, खिलौने ले लो बाबूजी, हर माल मिलेगा। ₹3, ये इंजन काला ₹3, ये गुड्डा ₹3, ये खरगोश ₹3, ले लो बाबूजी ₹3। और लुटा दिया माल, लुटा दिया माल।
0: अब बाबूजी कहिए क्या दू, ₹3। ई से इंजन और ग से गुड्डा, ख से खरगोश। ठीक है ठीक है, ये तीनों ले जा। अरे भैया ये इंजन, गुड्डा और खरगोश, ये तीनों दे देना। ये ले, ये ये ये ले रुपए। हाँ ये ठीक किया। और हाँ हाँ हाँ, ये रसगुल्ले बहुत बढ़िया हैं, और ये सेब दोनों एक एक किलो ले लेता हूँ। र से रसगुल्ला, से सेब। अब बचे ₹2। ठीक है, हो गया बजट पूरा। शीला भी क्या याद रखेगी कि मैंने उसी के पढ़ाए हुए पाठ के हिसाब से सामान खरीदा है। अब घर चलता हूँ। ये लो सामान।
2: अरे बड़ी जल्दी आ गए, पर ये क्या, ये इंजन और ये खिलौने, ये सब तुम्हें लाने को किसने कहा था?
0: तुमने, मैं अपनी मर्जी से कोई सामान नहीं लाया हूँ। हाँ
2: क्या, ये इंजन, गुड्डा, ये घर गृहस्थी है या कोई नुमाइश? और ये मिठाई का पैकेट, ये सेब, ओफो, सारी तनख्वाह चाटने में ही फूंक दोगे क्या? मैं कहती हूँ आखिर तुम्हें समझ कब आएगी, ना अजवाइन लाए, ना नमक, ना हल्दी। जरा लाना तो वो लिस्ट, वो जो मैंने तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट में दिया था।
0: वो यही कहीं होगी। पर प्रिये तुम अपनी पढ़ाई याद कर लो ना।
2: क्या खाक याद कर लूं, क्या जगमोहन ने भी याद नहीं दिलाया कुछ?
1: मैं अंदर रहता हूँ प्यारे।
0: अरे आओ आओ, और अपने दोस्त का जनाजा देखते जाओ। सुना था गए हुए वापस नहीं आते, पर अब तो वो भी वापस आने लगे। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बैठो बैठो यहाँ बैठो।
3: अरे बैठने नहीं आया राकेश, मैं तो कुछ देने आया हूँ।
0: अरे अरे तो रुपए, रुपए ही दोगे ना?
3: रुपए, कौन से रुपए?
0: अरे वही जो तुमने मुझसे रेस्टोरेंट में लिए थे।
3: रेस्टोरेंट में? यार देख मजाक ठीक नहीं है।
0: देख मजाक तो तू कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी एक घंटे पहले रेस्टोरेंट में तूने मुझसे रुपए मांगे थे और मैंने दिए थे, और तूने कहा था कि काम चल जाएगा।
3: काम तो चल जाता प्यारे, मगर तुमने रुपए दिए कहाँ? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास?
0: क्या मतलब?
3: मतलब ये कि आपने जो मुझे रुपए दिए उसकी कोई रसीद है ब्लैक एंड व्हाइट में? खुद तो घर के सामान की लिस्ट तक ब्लैक एंड व्हाइट में मांगते हो, और पैसे लेने देने के बाद यूं ही फोकट में कर लेते हो। वाह क्या कमाल है
0: यार। एक तो तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, और ऊपर से मुझसे मजाक कर रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
2: आहा, अपनी याददाश्त तो ठीक नहीं, और दूसरों को कहते हो हर बात लिखित यानी ब्लैक एंड व्हाइट में लिया करो। मैंने घर के सामान की लिस्ट दी थी, वो भी न जाने कहाँ फेंक दी तुमने।
0: अरे तो मैं क्या करूँ, मुझे याददाश्त भी तो भगवान ने ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दी। अब रखो तुम घर का सामान और रखो तुम रुपए, मैं तो चला। हाँ
3: अरे अरे मेरे भाई, ऐसे कहाँ चल रहा है, अब केवल रुपयों के लिए इतनी बेरुखी? ये लो अपने रुपए।
2: अरे ये तो सामान की लिस्ट है जो मैंने नहीं दी थी।
0: पर ये तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई जग्गू?
3: इसलिए कि तुम्हारी याददाश्त तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं मिली, तुमने रेस्टोरेंट में रुपयों के साथ मुझे ये लिस्ट भी दे दी।
0: और तूने इसे ले लिया, और रुपयों का तूने क्या किया बच्चू?
3: उसका तो मैं ये सामान ले आया जो तुम लाना भूल गए। आखिर मैं करता क्या, ये ब्लैक एंड व्हाइट में जो थी।

आज आप सुन रहे थे महावीर सिंघल की लिखी झलकी ब्लैक एंड व्हाइट। निर्देशक थे आनंद किशोर माथुर। ये झलकी आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश हंसी तो फंसी फिल्म से, आवाजें चिन्मयी श्रीपदा और शेखर की, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के, संगीत विशाल शेखर का।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अजब प्रेम की गजब कहानी। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत आतिफ असलम और अलीशा चिनॉय की आवाजों में। आशीष पंडित ने बोल लिखे हैं और संगीत तैयार किया है प्रीतम ने।

हैप्पी न्यू ईयर। अभी आपने सुलमे, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह को सुना। संगीत विशाल शेखर का था, बोल इरशाद कामिल के। चित्रलोक कार्यक्रम में लेते हैं अब एक छोटा सा अंतराल।

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। वन नाइट स्टैंड, अब सुनिए इस फिल्म का गीत मीट रॉस और अरिजीत सिंह की आवाज में। बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद ने, संगीत मीट रॉस का।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

विक्रम की अंतिम पेशकश गैंगस्टर फिल्म से अभिजीत और सुनिधि चौहान की आवाजों में। नीलेश मिश्रा ने गीत को लिखा है और संगीत तैयार किया है प्रीतम ने।

इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति

0: योजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।

0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,900। बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं प्यासा।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब रविन्द्र जैन के गीत संगीत निर्देशन में सुनते हैं चित्त चोर फिल्म का गीत, आवाजें येसुदास और हेमलता की।

लीजिए सुनिए राजा मेहंदी अली खां का लिखा मेरा साया फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत मदन मोहन का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: विचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: लीजिए सुनिए दस्तक फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है मदन मोहन ने।

0: के बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम की अंतिम पेशकश जुर्माना फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत आडिबामन का बोल आनंद बख्शी के।

अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म जुर्माना में सुना। आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
3: संगीतकार खयाम,
2: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
3: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं। इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

0: कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाजें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज मेरी लड़की जैसी थी। तो लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस, आवाज तुम्हारी एकदम लड़की की तरह। लेकिन एक बात यह थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की। तो म्यूजिक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूजिक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जिससे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेम नगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेम नगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफी फिल्में मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें,

क्योंकि गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती है गाने की तो वो अपनी आवाज़ में गाता है, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंत दा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चले था, सब उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनकरेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया। फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा, उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी, तो वहाँ लोगों को तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का, किशोर का, वादा तेरा वादा। अरे सच

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? अजी जाने क्यों नहीं, अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहाँ भी।
1: इधर तुम्हारे घर में, तुम्हारे सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सलावर इस बच्चा लोग को? ये पालता ये। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अम्मा अकबर, एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने लाके डायलॉग्स को लिखा, उनको बैठ किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये सुदेश भोसले, इन्होंने गाया आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे। तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती है। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुमा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊंगा, मेरे सारे गाने सुदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज।

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार।

FM 103.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी रांची का ये विविध भारती केंद्र है। छाया गीत कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: स्वदेशी।
1: याद रखिए, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से हम बोल रहे हैं। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

जिधर देखें उधर मस्तियां हैं, शोखियां हैं, तेरी निगाहों के ए सनम, जरा घबरा के जरा शर्मा के लूटते जाना, जलवे हैं तेरी निगाहों के ए सनम।

सीने में मोहब्बत का अंगारा, कोई क्या जाने कैसे बनेगा सहारा, ये बादल आवारा इसे कौन पहचाने।

ये रुत, ये नजारे, ये मस्त निगाहें भूलना नहीं है, ये पहली मुलाकात, ये प्यार भरी बातें जीने के सहारे, इन्हें भूलना नहीं है।

0: भरी बातें, ये पहली मुलाकातें, ये प्यार भरी बातें,
1: मिल गए दुनिया में जीने के सहारे सहारे।
2: छाया गीत के बाकी गीत इस अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत।
1: ये आँखें उफ़ यम्मा, ये सूरत उफ़

तूफान उठाएगा ये जमाना, उठाने दो, दिल तो दौड़ता ही जाएगा अपनी मंजिल की ओर। नजरें मिली हैं तो सपनों की महफिल में शमा जलती ही रहेगी, दो दिल बढ़ते ही जाएंगे अपनी मंजिल की ओर।

सितारों का झिलमिलाना, चिरागों का जलना, दे रहा है इशारा, तुझे रोके तो कैसे। दिल पहले भी कब भरा था, आज भी प्यासा है, ये आजमाइश होती ही रहेगी, ऐ सनम तुझे रोके तो कैसे।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीब आबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dheeraj Seth, Air Marshal